تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن

شان ہی نرالی ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں۔

0: FM 100's time check. It's 7 a.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM247365 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा न होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: मेरा आराम, AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

This one's dedicated to that one love in your life. Bohemia.

0: माजरा बहन, जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: कूल किंग।
7: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
8: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
9: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
12: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
13: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
14: ये क्या है भाई?
13: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैज़ कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
15: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैज़ कैश।
13: अभी जैज़ कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
16: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
9: And Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी।
4: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: एंड अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
15: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जस्ट कैश।
4: एंड
17: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
4: एंड
18: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
4: एंड
18: तूफान है,
17: Life Boy Anti-Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg. 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
19: बैन अल-अक्वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों। ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
20: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
21: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
22: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
23: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
24: ہماری ذمہ داری ہے۔
25: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
20: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
26: FM 100
20: 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
26: السلام علیکم پاکستان۔

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khaab, wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL.
3: कूल किंग. बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
4: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
0: This program is brought to you by
5: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: And Cool King Hair Oil, jaise chalta phirta AC.
1: And HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.

0: जहां ख्वाब वहां HBL
1: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
2: एंड जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश
3: एंड लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
4: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
3: एंड
4: तूफान है
3: And
2: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg. 100% aage badho, bina ruke.
5: FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और वक्त हुआ है कि मैं आपको बताऊं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। वैसे इतनी गर्मी में कुछ भी बात करने का दिल ही नहीं चाहता, लेकिन खैर अब टॉपिक तो बता ही देती हूँ। और टॉपिक हमारा यह है कि क्या आप आसानी से दूसरों से अटैच हो जाते हैं इमोशनली, कि आप आपको बहुत जल्दी किसी से प्यार हो जाता है या नहीं होता। अखबार तो दे दे जरा, अखबार तो दे दे। हाँ जी, शुक्रिया। तो ये मेरा आज का टॉपिक है कि आप इमोशनली अटैच जल्दी होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आप सालों गुजार लें लेकिन कोई अटैचमेंट फील ही नहीं होती। ऐसे भी लोग होते हैं, आप एक जगह काम करते हैं, आप एक बंदे से तकरीबन रोज मिलते हैं लेकिन आपको उससे कोई अटैचमेंट, कोई फीलिंग, कुछ नहीं होता। कुछ लोग होते हैं आप उनसे बस दो तीन दफा ही मिलते हैं और आपको लगता है यार कि कब के बिछड़े जाने हम, आज कहां आके मिले। नो, जैसे सावन में कहीं प्यासी घटा छा के मिले। एक्चुअली अभी गर्मी में मुझे ऐसे ही गाने याद आ रहे हैं कि यार कहीं से सावन घटा की कुछ चीजें हो जाए। लेकिन खैर, आज का हमारा टॉपिक यही है कि आपको किसी से इमोशनल अटैचमेंट होती है या नहीं।

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेस उठाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: कूल किंग चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम, पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
4: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
5: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
6: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
7: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
8: ये क्या है भाई?
7: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
8: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
7: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
9: तुम कभी ना झुके, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
10: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
11: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
12: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBO ब्रांच। HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO।
4: कूल किंग।
5: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
6: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO।
7: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: HBO Freedom account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO।
8: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
9: AGS ट्यूबलर, दिखाए काम। AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम।
6: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: एंड HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO।
10: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
11: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश।
12: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
3: एंड

0: and
1: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with yogurt and egg. 100% aage badho bina ruke.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्म-ए-इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत यूं खोले आपकी मुंतजर है।
6: टाइम से ऐसे ही के मैं हूँ कब्र च चला गया, मैं नहीं बचा।
7: फिर उन्होंने वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
5: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
8: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
5: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्भाव के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
10: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
9: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
11: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
12: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
9: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम हुई।
11: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
12: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
11: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
9: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
11: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
9: आइए वेट से आगे का सोचें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसी जा रही है आपकी? गुड मॉर्निंग, आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है और आपने अपनी गर्मी में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। पहले अपना ख्याल करें ताकि बाद में भी जो है वो दूसरों का भी आप ख्याल कर सके। इतनी गर्मी के अंदर लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत है भाई। मैं होती कहती यार बाद में प्रोटेस्ट कर लेना या रात में प्रोटेस्ट कर लेना, क्योंकि दिन में तो खैर बहुत ज्यादा गर्मी है। लेकिन खैर, अगर आप एहतजाज पे निकलें तो अपना ज्यादा ख्याल रखें और कैप्स वैप्स पहन लें और पानी की बोतलें साथ रखें, कैरी का शरबत भी पिए। कैरी का टाइम तो खैर खत्म हो गया है, मगर मैंगो शेक वगैरह सब चीजें जो है ना एहतजाज के अंदर भी खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पड़ी। अगर आप बेहोश होके गिर रहे हैं तो यहां पे किसी को तर्स नहीं आता, क्योंकि लोग अब इमोशनली ज्यादा अटैच्ड ही नहीं होते किसी से। बल्कि अगर आप गरीब हैं, दुखी हैं, तो लोग आपसे ज्यादा दूर ही रहना पसंद करते हैं। लोगों को दुखी और गरीब लोगों कोई नहीं चाहिए। खैर, आप लोग मुझे मैसेज करें आज समिया के फेसबुक पेज पे या आज समिया इंस्टाग्राम पे। और आज का हमारा अजीम और शान टॉपिक ये है कि आप क्या कहते हैं, आप जो हैं वो मतलब कि कितने आपके इमोशनली अटैच हो जाते हैं लोगों से, आपकी दोस्ती जल्दी हो जाती है, और या फिर आप कहते हैं कि बस नहीं भाई, मैं तो बहुत टाइम लेता हूं दोस्ती करने में, हर एक से थोड़ी दोस्ती हो जाती है और दोस्त होता नहीं हर हाथ में लाने वाला वगैरह वगैरह। क्योंकि मैं तो हो जाती हूँ इमोशनली अटैच हर एक से, और कभी कभी अच्छी बात भी नहीं होती। जरूरी नहीं होता कि आप हर एक से ज्यादा अटैच हो, क्योंकि वाकई में लोग इतने अच्छे होते नहीं है जितने पहली मुलाकात में लगते हैं। लेकिन खैर, ये हमारी बातें, आप अपनी बातें बताएं, हमें मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे, एट आरजे समिया इंस्टाग्राम पे। और हम अभी आपके लिए प्ले कर रहे हैं ये अंग्रेजी गाना सेलीन डियोन की आवाज में, बिकॉज यू लव मी।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu bhi, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: ए दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500।
7: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
6: दुनी दो दो दुनी चार दुनी दो
8: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
9: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
10: ये क्या भाई?
9: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
11: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
9: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
12: तुम कभी ना झुके मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
13: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
14: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
15: Public service message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں۔ زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، PDMA، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
4: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ۔ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
15: پبلک سروس میسج۔ شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں۔ زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، PDMA، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
16: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. On payment, 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, तब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: This program is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
5: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
6: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab वहाँ HBL।
7: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
8: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश।
9: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
10: एंड

0: installment. 12 महीनों के आसान installments में. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpaid by Jazz.
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: And Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
4: And HBL Freedom Account. Jahan khab. वहाँ HBL
5: and अगर आप हैं इंड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
6: एंड जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश
7: एंड लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
8: एंड

हाँ जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आजय समिया। गर्मी का क्या हाल है? अगर आप गर्मी में सर्वाइव करें ये बड़ी बात है, और यकीन माने गर्मी में ज्यादा नखरे नहीं करें। अगर आपके घर या ऑफिस में लाइट है तो इसी में शुक्रगुजार करें, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट यही चाहती है कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सारी आवाम मर ही जाए, क्योंकि ना होगी आवाम ना इनसे करेगी सवाल। तो ये उनकी पूरी स्ट्रैटेजी है, इनको तो नहीं टेंशन दो, इतनी टेंशन दो कि टेंशन से मर जाए। मतलब बिजली कभी बंद कर देते, इतनी गर्मी में बिजली बंद करते हैं, मतलब के हाथ है। सेकेंड गैस, मतलब यार अगर आप गैस का स्केड्यूल दे रहे हो तो उस टाइम पे तो गैस दे दो, मगर नहीं जी नहीं। और आपको मैं बता दूं कि किसी को भी नहीं बताया करें कि आपका ताल्लुक स्वी गैस से है कि इलेक्ट्रिक से है या सिंध गवर्नमेंट के किसी भी इदारे से है, क्योंकि अगर आपने आवाम में बता दिया और अगर आवाम में कोई इमरजेंसी लड़की हुई तो सोचे आपके कि क्या करेंगे। उस वक्त आपकी कोई भी अथॉरिटी हमको चुप नहीं करा सकेगी। अभी तो आप टेलीविजन पे या मीडिया पे आके बड़ी अथॉरिटेटिवली बात कर रहे होते हैं, लेकिन और वहां बेचारे वही वाले चार सहाफी होते हैं, वही वाले घिसे पिटे सवाल कर रहे होते हैं। जरा पब्लिक में तो आए, फिर आपको पता चलेगा कि कितना लोग आपको नापसंद करते हैं। और मैं तो सोचती हूँ यार, अगर मैं लीडर होती और मुझे पता होता कि लोग मुझे इतना ज्यादा नापसंद करते हैं तो मैं शायद रिजाइन कर देती, मगर नहीं नहीं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप उन्हें कितना पसंद करें, कितना बुरा भला बोले, ये वही करेंगे जो उन्हें करना है। और आवाम की भीतरी के बारे में इनके पास सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है। तो आपने इनके बारे में, आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, इनको छोड़ते हैं। मुझे इतना अफसोस होता है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो मैं इतने सालों में आपके दिल में जगह नहीं बना पाए, इतने साल इनको मिले कि वो, और इनका सिर्फ मतलब सोचे आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि आपने आवाम की खिदमत करनी है, दैट इज देयर जॉब डिस्क्रिप्शन। आपको पैसे नहीं कमाने, आपको बिजनेस नहीं करना, दैट इज ऑल।

0: Good morning, Pakistan, on FM 100.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं। घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IDFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? 24 सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और 24 सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
4: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से जायद इनामात।
3: दुनी दो दो दुनी चार,
5: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IDFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलो डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
7: ये क्या है भाई?
6: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
7: तुम कभी ना झुके, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
8: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
9: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
4: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
5: This program is brought to you by
6: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. दिल को है आराम।
7: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
8: एंड HBL फ्री रमकाम, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
10: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश।
11: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
12: एंड

वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट अजय सुमिया. और प्लीज जैसे कि इलेक्ट्रिक वालों ने कहा कि गर्मी से अपने आप को बचाएं, कि इलेक्ट्रिक की वजह से ही लोगों को ज्यादा गर्मी लग रही होती है जब इतनी लंबी लंबी ये लोग लॉन्ग लोड शेडिंग करेंगे. मतलब ये पहले से प्लान और कुछ नहीं ऑर्गेनाइज करते कि भाई लोड शेडिंग करनी है तो सर्दी के मौसम में कर लो, गर्मी में लोगों को सिर्फ जिंदा रहने दो. लेकिन वो क्या इलेक्ट्रिक ही क्या. और वैसे रेट्स ये बढ़ाए जाएंगे, कौन कौन से टैक्सेस लग रहे हैं आपके बिल्स में आपको खुद ही नहीं पता, कौन कौन से रेट्स बढ़ रहे हैं अल्लाह ही पूछेगा इन लोगों को जो आवाम को तकलीफ दें. अल्लाह अब मैं हम लोग अल्लाह के ही पास अपना मुकदमा पेश कर सकते हैं और कहां पेश करें. और इकबाल हुसैन साहब आपके लिए बड़ी दुआएं लोग कर रहे हैं, आप टेंशन ना लें. और क्या कहते हैं हमारे पास अभी आबिद अमीन ने दुआओं से भरपूर एक मैसेज मैं पढ़ी थी किया था इकबाल हुसैन के लिए और वो कह रहे थे कि अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए इकबाल हुसैन साहब के लिए, ढेर सारी दुआएं. कोई हौसला अफजा बात हम क्या कहेंगे. इकबाल साहब आपका तो खुद ईमान इतना मजबूत है, तवक्कल इतना मजबूत है अल्लाह की जात पे कि कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आपको नहीं चुका सकती, ये मुझे पता है. तो इकबाल साहब आपने हमारे लिए दुआ करनी है प्लीज. वो देखें इकबाल अपने बारे में शुरू हो गए, इकबाल हुसैन साहब आबिद अमीन ने कहा अपने लिए दुआ कर ले, माशाल्लाह माशाल्लाह. और पता है समय मुझे लोगों से दिली वाबस्तगी हो जाए इसमें क्या बड़ी बात है, मतलब हम क्या चीज है. मजा तो जब है जब लोगों को हमसे दिली वाबस्तगी हो जाए, मतलब सेलिब्रेट करने वाली बात है कि हम भी किसी काबिल हैं गालिबन. अच्छा जी मोहम्मद शकील कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप. गर्मी से आपने अपने आप को बचाना है. मेरी आदत कुछ ऐसी है कि जहां जुल्म हो रहा हो तो मजलूम से फौरन दिली वाबस्तगी हो जाती है और मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूं. आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये सब उन्हीं लोगों की दुआ है. बिल्कुल सही बात है, आप जरूर खड़े हों, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, कदम बढ़ाओ साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं. तो मैं तो ऐसे ही जो है ना मैं कहती रहूंगी. इसके अलावा हमारे पास आली अंसारी का भी मैसेज आया हुआ है, सलाम किया आली अंसारी. बिजी होंगे, गाड़ी चला रहे होंगे, है ना, गाड़ी चलाते वक्त मैसेज करना थोड़ा होता है. अच्छा क्या कहते हैं वसी अहमद कह रहे हैं हमने किताबों में पढ़ा था कि सखर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, काम के सिलसिले में सखर जाने का मौका मिला तो सखर की जबों हाली, सही बोल रही हूँ, जबू हाली होता है सामने आई. सकर एक गांव का मंजर पेश कर रहा था, कच्ची सड़कें, सफाई का नाकिस इंतजाम जा बचा नजर आया. हाँ अलबत्ता सखर बिराज काबले जिक्र जगह है और वो भी अंग्रेज राज ने बना था. मासूम अली शाह की मीनार की हालत को देखकर ही बहुत अफसोस हुआ. शुक्र करें कि सखर बिराज जो है वो अंग्रेजों के जमाने में बना था, अगर हमारे जमाने में बना होता तो कब का बह चुका होता. एक्चुअली करनी ही नहीं है कोशिश, अगर इनके पास वसाइल भी हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का मसला है इंतहाई शदीद कंजूसी, ये खर्च करना ही नहीं चाहते. ये वो लोग हैं जो गंदम रख रख के खराब कर देते हैं लेकिन आवाम तक नहीं पहुंचाते. ये वो लोग हैं जो दवाइयां रख लेंगे बांटेंगे नहीं, एक्सपायर हो जाएंगे. ये वो लोग हैं जो एम्बुलेंस को इस्तेमाल नहीं करेंगे, एम्बुलेंस चल खड़े खड़े उसमें जंग लग जाएगा. और ये मैं खुद जाके चीजें देख चुकी हूं. और एक गांव था सखर के करीब, वो था घूमरो गांव, और घूमरो गांव में गई थी और मैंने स्कूल्स में रेड्स किए थे और दैट वाज वे बैक व्हेन आई वाज इन मीडिया. लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि इतने सालों में भी कोई इम्प्रूवमेंट आई है. आवाम को खुद ही इम्प्रूवमेंट लानी है अपने अंदर, इन लोगों से कोई उम्मीद हम नहीं रख सकते. ये पता नहीं किस एजेंडे के साथ आते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इनका एजेंडा लोगों को अब समझ आना शुरू हो गई है कि ये किस तरीके से इलेक्शन जीतते हैं और किस तरीके से जो है ये काम करते हैं, और अब अवेयरनेस जाग गई है. खैर हमारी बातें चलती रहेंगी थोड़ी देर के लिए ही सही. मैं प्ले करना चाहती हूँ ये वाला ट्रैक काविश बैन जाफर की आवाज में, आए सुनते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है कि आपकी दिली वाबस्तगी होती है लोगों से कि नहीं, लेकिन मेरी तो हो ही जाती है. तो सुनते हैं तेरे प्यार में.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं। घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: 100 FM।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
0: This program is brought to you by
6: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. दिल को है आराम।
7: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
9: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश।
0: एंड
10: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL.
3: पब्लिक सर्विस मैसेज. शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें. गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें. ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें. यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश किया जा रहा है.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: बैक टू बैक, बैक टू बैक, ओनली म्यूजिक, नो आरजी टॉक. ओनली म्यूजिक, नो आरजी टॉक. दिस इज FM 100.
7: कम ऑन.

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: FM 247 365 FM 247 365

0: your location for maximum music. It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Nikai Kaam. AGS Tubular Battery. Then go ahead, Aaram.
2: Azra Behen, Zara Baat to Suno. Hatu Pise, Bhago. Ahmed, Hatu Vase.
3: Hadise Achanak hi hua karte hain. Ghabraye nahi. समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: खवातीन और बच्चों के हकूक का एहतराम हम सब की जिम्मेदारी। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
3: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशत गर्दों की माली मुआवनत भी दहशत गर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
5: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो,
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे, बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Like us on facebook.com/FM247365.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
2: Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Ye paigham حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: It's 12 noon. This time check is brought to you by
1: Yellow by JazzCash.
2: Abhi JazzCash app download karo aur Yellow ke through payment karo.
3: Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
4: Ahmed, hatu wahan se.
5: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: Like us on facebook.com/fm247365. FM 247365. FM 100. 31 saal FM 100. Aapki awaaz. Assalamu alaikum Pakistan.
6: Assalamu alaikum Pakistan.

to with the lunchtime special on the big one, FM 100.

सो यार आई मस्ट से कि छुट्टी कर लें, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, तो आपने ऑब्वियसली अपना ख्याल भी ज्यादा रखना है, पानी भी बहुत सारा पीना है, और उस सबसे ज्यादा जरूरी एक और चीज ये है कि ठंडे से गर्म और गर्म से ठंडे में अचानक से मत जाएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर औकात बहुत ज्यादा गर्मी में हम जो है वो ऐसे कदम उठा लेते हैं, लेकिन ये कदम हमारे लिए ठीक नहीं है। सो मेक श्योर कि आपने ये नहीं करना है कि अचानक से बहुत ज्यादा ठंडे से गर्मी की जगह पर या बहुत ज्यादा गर्मी से ठंडी की जगह पर नहीं आना है। सो ये तो हो गई सबसे पहली बात, और आज प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बकायदगी से आगाज करने से पहले ही मैंने आपको ये बात बता दी, तो चलें जी अब करते हैं बकायदगी से आगाज और फिर करते हैं आपसे खूब सारी बातें, चाहे वो गर्मी से रिलेटेड हैं या ताजा तरीन सूरत हाल।

0: यस एवरीबॉडी, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। और अब जबकि आगाज हो चुका है तो ऑब्वियसली आपने देर नहीं करनी है, जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। तो जिस तरीके कार के जरिए आप लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आते ही साथ आज हमने गर्मी का जिक्र कर लिया है क्योंकि भाई बड़ी गर्मी हो रही है इस वक्त कराची में। तो बिल्कुल भाई आज कराची में आग बस्ता हवाएं चल रही हैं, तो इसीलिए आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। आज हीट स्ट्रोक का खतरा 90% से भी ज्यादा बढ़ गया है, एहतियात लाजमी है। जी हाँ, इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपको आगाही फराम करें कि स्ट्रोक का खतरा इस दफा 90% से भी ज्यादा बढ़ गया है, तो एहतियात करें, इस वक्त बहुत जरूरी है कराची में। जी हाँ, इस चीज का अंदाजा आपको इस वक्त हो ही सकता है, जो लोग घर से बाहर हैं ऑब्वियसली वो इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा गर्मी है। सो प्लीज टेक केयर और घर की। अच्छा, इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो हम आपको देंगे जो कि बड़ी जरूरी होती हैं। अच्छा भाई, गर्मी की शिद्दत बरकरार है तो आपने इसमें क्या क्या एहतियात करनी है। आपने जो है वो एक गिलास पानी पीना है हर 20 मिनट बाद, ये बहुत जरूरी है, जितना भी ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकते हैं। अच्छा, हल्का हल्का खाना खाएं, ये बहुत जरूरी है। लाइट मील्स लें जिसमें फलों का इस्तेमाल करें, दही खाएं या फिर लस्सी पी लें, इस तरह की चीजें बहुत अच्छी हैं। सिट्रस फ्रूट का भी इस्तेमाल करें, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। अच्छा जी, 11 से 4 बजे तक के दरमियान आपने बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना है, गैर जरूरी। अगर ऑब्वियसली कोई काम है तो जाना पड़ता है, लेकिन गैर जरूरी किसी चीज की खरीदारी है उसके लिए आप बिल्कुल मत निकलें। उसी के साथ साथ इस वक्त गर्मी के टाइम में बच्चों को बाहर खेलने भी नहीं दें, डायरेक्ट जो सनलाइट जहां पड़ रही है ना वहां पर आपने इस वक्त कोई भी काम नहीं करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसी के साथ साथ आपने ढीले ढीले कपड़े पहनने हैं और हल्के रंग के कपड़े पहनने हैं, चश्मा पहने या फिर आप लोग जो है स्कार्फ पहन सकते हैं, सर पर जो है वो अपने हेड को कवर रखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खवातीन दुपट्टे से कर सकती हैं, मर्द हजरात कैप पहने या फिर ग्लासेस लगाएं। उसी के साथ साथ अपने पर्दे बंद रखें। जी हाँ, अपनी खिड़की के पर्दे इस वक्त बिल्कुल भी नहीं हटाएं, बिकॉज धूप है बाहर, बहुत गर्मी है, सो प्लीज अपने खिड़की पे पर्दे डले रहने दें। अच्छा जी, अवॉइड करें इस वक्त चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक्स, क्योंकि ये जो है वो डिहाइड्रेशन का सबब बन सकती हैं, तो इसलिए आपने नहीं पीना है इस वक्त। आपने ORS और लेमनेट पीना है, नींबू पानी पिए विद सॉल्ट एंड लिटिल बिट ऑफ शुगर। उसी के साथ साथ एक और बड़ी जरूरी चीज है जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जी पार्क गाड़ी, अक्सर औकात होता है ना कि जी हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं कुछ खरीदने तो हम बच्चों को कहते हैं या फिर बहुत सारे लोग अपने पेट्स के साथ सफर कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं कि जी 2 मिनट का काम है, तुम गाड़ी में बैठे रहो, मैं जल्दी से ये चीज ले आता हूं या वो चीज ले आता हूं, ये काम कर लेते हैं। तो इस वक्त स्ट्रिक्टली मना है, क्योंकि जो गर्मी की सूरत हाल है इसमें कुछ मिनटों के लिए भी आप ना तो अपने बच्चों को ना किसी बड़े को किसी को भी गाड़ी में आपने नहीं छोड़ना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ला गाड़ी का ऐसी चल रहा हो या आपने इसी बंद कर दिया हो, लेकिन प्लीज इस वक्त गाड़ी में किसी को भी ना छोड़ें। और अगर आपको महसूस हो रही है बहुत ज्यादा सुस्ती या फिर आपके सर में दर्द हो रहा है या फिर आपको बुखार हो रहा है, तो फौरन आपने जो है वो डॉक्टर से रिजू करना है, अपने हेड को कवर करना है, या तो कैप पहने या फिर एक बहुत जरूरी चीज है कि आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें। अम्ब्रेला सिर्फ बारिश से बचाव के लिए नहीं होती, धूप से बचाव के लिए भी एक अच्छी चीज है, तो इसका आपने जो है वो करना है इस्तेमाल। और शाम के औकात में आपने अपने खिड़की दरवाजे खोल देने हैं ताकि वेंटिलेशन हो, घर को इतना भी पैक ना कर लें कि जी वेंटिलेशन ना हो सके, तो इस चीज का भी रखें आप लोग भरपूर ख्याल। और उसी के साथ साथ शावर जरूर लें, ज्यादा से ज्यादा लें, अपने जो है वो आप नेक पे बहुत पानी डालें, फॉरहेड पे बहुत पानी डालें ताकि आप जो है वो कंफर्टेबल फील कर सकें। तो ये था जी एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने अपने सुनने वालों को बताती चलूं, सो प्लीज इन चीजों को फॉलो करें। और उसी के साथ साथ हम चलते हैं ब्रेक की जाने, आते हैं वापस ब्रेक के बाद।
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन DNCs को तस्लीम करना है।
2: कूल किंग चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम, पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
4: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

यस एवरीबॉडी, सो आई एम बैक। और एक अदर ट्रैक को भी हमने शामिल कर लिया। मैंने कहा भाई गर्मी बहुत ज्यादा है तो जरा हम अपने लिसनर्स को कूल एंड काम करते हैं, उन्हें ठंडा ठंडा महसूस कराते हैं कुछ अच्छे अच्छे से ट्रैक्स को शामिल कर। और आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़े हम लाइट ट्रैक्स भी शामिल करें बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी है और इस गर्मी में ना जरा अच्छे अच्छे ट्रैक्स बड़े मजे के लगते हैं। तो बिल्कुल जी, वो तो हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे। इसी के साथ साथ आज 11th ऑफ जून है, यानी कि जून की आज 11 तारीख है, तो जिसकी सालगिरह है वो आपको बहुत मुबारक हो। इसी के साथ साथ मैंने कहा जी लगे हाथों जरा ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से जो आज हैं वो कोई खास दिन मनाए जा रहे हैं या फिर नहीं। अच्छा, आज एक डे मनाया जा रहा है जिसका नाम है से हाई डे, यानी किसी को भी आपने हाई कहना है, आज का ये दिन है। सो अच्छी बात है। वैसे मैं कहती हूँ कभी भी हम बहुत सारी जगहों पर बहुत दफा ऐसा करते हैं, मैं कहती हूँ किसी को सलाम दुआ कर लें तो इसमें कोई मजायका नहीं है। जरूर सबको जरूर मैं कहती हूँ कि सलाम करना चाहिए, हाई हेलो करनी चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि आप उनसे हाई हेलो तो करते हैं लेकिन वो हमेशा ना आपको टैट्रम्स ही दिखा रहे होते हैं, रूड बिहेवियर ही होता है। तो हाँ, फिर उनसे ये है कि कुछ टाइम तक तो जरूर करें और फिर गुरेज कर लें तो वो खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन वैसे जरूर करना चाहिए हाई हेलो। हाई हेलो तो नहीं, बेसिकली हम तो करते हैं सलाम, अस्सलाम वालेकुम। तो बिल्कुल जी, सलाम जरूर किया करें लोगों को और ये बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ जब भी आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, जहां कहीं भी जा रहे हैं, तो वो जो सुबह सुबह का एक मीटअप होता है, चाहे वो अपने दोस्तों से मिल रहे हैं किसी से भी, तो अस्सलाम वालेकुम कहने का ना एक अलग ही मजा है। सो एक्चुअली लगता है कि नाउ यू आर बैक टू द वर्क, या आप किसी चीज में एंटर हो गए, लाइक ऑफिस में एंटर होते ही यू हैव टू से दिस अस्सलाम वालेकुम। सो भाई हाय हेलो करना तो बनता है, यानी कि सलाम दुआ तो भाई चलती रहती है और जरूर करना भी चाहिए। और बहुत सारे लोग ना ये सोचकर भी सलाम दुआ करते कि यार कभी उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं। यार इससे कोई फर्क नहीं करता अगर पहल आप कर लें या वो कर लें, डजेंट मैटर, लेकिन करना दोनों को चाहिए। तो ये चीज तो जरूर इंसान को, हर एक इंसान को ना अपनी प्रैक्टिस में एड करना चाहिए। तो बेसिकली आज ये दिन मनाया जा रहा है, तो क्या आप भी इस दिन को रोजाना की बुनियाद पर बनाते हैं या नहीं, ये भी हमें जरूर बताएं। जब तक हम चलते हैं एक अदद ट्रैक की जानिब, और बहुत दिनों से इसको शामिल नहीं किया तो चलें जी आज कर लेते हैं शामिल।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur
1: bhul ja. जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।

0: us on facebook.com/FM247365.
1: FM247365.
2: You're in tune with the Lunchtime Special on the Big One. FM 100.
1: In the Lunchtime Special, only on FM 100.
3: Don't miss out.
4: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the Lunchtime Special with the one and only Fatima Khan.
3: Join Fatima Khan.
4: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's make your midday break a blast.
3: Midday break a blast.
5: Hello and assalamu alaikum Pakistan. This is me Fatima Khan aur ek bar phir se main aa chuki hu wapas. Aap sab sun rahe hain mujhe FM 100 Pakistan par aur aap log mujhe sunte hain Monday till Saturday 12 se 2 ke darmiyan. तो हमारा और आपका साथ जो है वो कायम और दायम है, जिस दौरान हम आपसे खूब सारी गुफ्तगू भी कर रहे हैं. गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है तो आपको एहतियात भी बता रहे हैं कि जी एहतियात करें और खूब सारा पानी पिएं. और जब तक ये हफ्ता जारी है तो इस हफ्ते में जो बला की गर्मी है ना, इस हवाले से हम आपको अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि ताकि आप लोग अपना ख्याल रखें और पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, हाइड्रेटेड रहें, डिहाइड्रेटेड नहीं रहें, ताकि आप जो है वो सेहतमंद रहें. क्योंकि इस वक्त सेहतमंद रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट और सेहतमंद रहने के लिए खूब सारा पानी पीना बहुत जरूरी है, जिसमें पानी की कमी से बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं. जी हाँ, तो इसलिए बहुत सारे मसले मसाइल से बचने का सिर्फ एक ही हल है, तो वो आपने जरूर अपनाना है. पानी आप लोगों ने पीना है. और इसी के साथ साथ हम जा रहे हैं प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत की जानिब, यानी कि एक अदर ट्रैक जो कि आप सभी के नाम हम करते हैं एवरीडे. तो बिल्कुल जी, वो ट्रैक हम आपके नाम करते हैं और मैं सोच रही हूँ कि जी कौन सा ट्रैक करें आप लोगों के नाम. हर दफा हम ये भी सोच रहे होते हैं कि भाई ऐसा कौन सा ट्रैक किया जाए जिसे सुनकर आप लोगों को मजा ही आ जाए. तो ये ट्रैक मेरा बड़ा फेवरेट है और आई होप आपको भी अच्छा लगेगा. हसन जहांगीर का हटो बचो, तो एंजॉय करें इसे.

ओके जी, सो जब बात आई डेडिकेट करने की तो मैंने कहा चलो जी इस ट्रैक को ही डेडिकेट करते हैं आप लोगों को। बड़ा मजे का ये ट्रैक है हसन जहांगीर का कि जी दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो हट वचो। तो भाई ये बात तो तय है, हसन जहांगीर ने तो कह दिया कि भाई जिसने भी आपका दिल तोड़ा है या दिल दुखा है आपने जो है ना उससे बिल्कुल दूर हो जाना है, बिल्कुल उसके करीब नहीं आना है, उससे हटना और बचना है। तो मैंने कहा ठीक है जी, जब ट्रैक डेडिकेट कर रहे हैं तो एक मजेदार सा ट्रैक आपको डेडिकेट करते हैं और उसी के साथ साथ आपसे ये भी जानते हैं कि भाई आपके लंच में क्या है, बिरयानी है, निहारी है, कबाब है, सब्जी है या फिर कुछ और मुनफरिद सा है। तो आपके लंच में इस वक्त क्या मौजूद है हमें जरूर बताएं। तो मजेदार सा आपका जो भी लंच में इस वक्त है, जो कुछ ऑप्शंस मैंने दिए हैं इसमें से कुछ है या कुछ और मुख्तलिफ है तो प्लीज हमें जरूर बताएं। तो भाई मजे मजे के लंच में आपके इस वक्त क्या है हमें जरूर बताएं। आम को मद्देनजर रखते हुए भी भाई मैंने बहुत सारी रेसिपी सुनी है कि कुछ लोग आम को रोटी के साथ खाते हैं, कुछ लोग आम को चावल के साथ खाते हैं, कुछ लोग आम का रस बना के खाते हैं। तो क्या कुछ इसी से रिलेट करता आपका लंच है या फिर कुछ और, तो प्लीज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस। तो जल्दी से हमें अपना लंच बताएं, जब तक हम चलते हैं एक अदर ट्रैक के जाने और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: ऑल राइट जी, सो आप लोग फरहान सईद का गाना सुन रहे थे और फरहान सईद की भाई क्या ही बात है। लेकिन अभी रिसेंटली फरहान सईद का एक ड्रामा चल रहा है जिसमें मुझे फरहान सईद की एक्टिंग जो है वो बहुत अच्छी लग रही है, जिसका आप ओएसटी सुन रहे थे। उसी ड्रामे की अगर बात की जाए सो बड़ा अच्छा एक टॉपिक भी हाईलाइट किया जा रहा है उसमें, वेरी नाइस। आजकल एआई का दौर है और एआई की वजह से अब बहुत सारी चीजों को जो है वो फेक बना दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे क्या हकीकत होती है, कितने मसले मसाइल का लोग शिकार हो जाते हैं जब लोग इस तरह के काम कर जाते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा ड्रामा है फरहान सईद का और इसमें फरहान सईद जरा मुख्तलिफ एक्टिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं, सो आई रियली लाइक इट। क्या आपने भी देखा है ये ड्रामा? तो ये बड़ा अच्छा ड्रामा है, इसमें अच्छी एक सबसे अच्छी चीज ये कि एक अच्छे डिफिकल्ट मौजू को हाईलाइट किया जा रहा है और फरहान सईद और सना जावेद इसमें एक्टिंग का जौहर दिखा रहे हैं। इसमें सबा हमीद भी मौजूद हैं, इसमें और भी काफी नामवर एक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं, शगुफ्ता जाज भी हैं, एंड एवरीबॉडी इज प्लेइंग अ सच अ ग्रेट रोल इन दिस ड्रामा। और ड्रामे के साथ साथ एक अच्छा टॉपिक भी है जिसे हाईलाइट किया जा रहा है, सो आई लाइक दिस ओएसटी एंड दिस ड्रामा टू। तो अच्छा लगता है कि जब भाई मुख्तलिफ मौजुओं पर ड्रामे बनाए जा रहे हैं और लोगों को हाईलाइट किया जा रहा है, अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा रही है, सो दैट इज रियली नाइस। और आजकल लोग काफी पसंद ही कर रहे हैं इस ड्रामे को। फरहान सईद और सना जावेद जो हैं वो इसमें मेन करेक्टर्स हैं, सो आप भी जरूर देखें इस ड्रामे को और एंजॉय करें। फिलहाल हम चलते हैं एक अदद ब्रेक की जानिब और आते हैं वापस ब्रेक के बाद।
1: अजरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे भागो।
2: अहमद हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

ऑल राइट जी, सो आप लोग इस ट्रैक को एंजॉय कर रहे थे, फरिया परवेज की आप लोग आवाज सुन रहे थे, और इसी के साथ साथ आप फरिया परवेज के बाद आप लोग डायरेक्ट फातिमा खान को सुन रहे हैं। तो बिल्कुल फरिया परवेज की फौरन बाद फातिमा खान आपके साथ मौजूद हैं। और भाई लंच का जिक्र कर रहे थे तो हमारे पास मैसेजेस भी आ चुके हैं, हमें मैसेज करते हैं, कहते हैं कीमा है लंच में। अच्छा ये वाले मैसेजेस मेरे पास जरूर आते हैं जो कि हमें ना बिल्कुल एक जो उनका मेन्यू होता है बस वो भेजते हैं और बता देते हैं कि बस ये है। अब किसने भेजा है, कौन है, ये नहीं बताते, लेकिन जो अपना मेन्यू है वो हमसे शेयर कर देते हैं। तो चलो जी, दैट्स ग्रेट। तो भाई ये तो कीमा खा रहे हैं। दूसरे मैसेज में आया है दही और रोटी, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस। और इस वक्त दही का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें क्योंकि बहुत फायदेमंद है। तो दही अगर आप खा रहे हैं तो बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, सो प्लीज आप लोग इसे खाएं, एंजॉय द लाइफ करेंगे। और जल्दी जल्दी से हमें अपना लंच बताएं कि आपके लंच में क्या मौजूद है या फिर क्या बनाने का इरादा है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे।

0: ओके जी, सो ट्रैक के साथ हम वापस आ चुके हैं और बातों का सिलसिला तो जारी ही है आपका और हमारा। जी हाँ, बिकॉज बातों के बगैर तो जिंदगानी बड़ी अधूरी है, तो इसलिए बात जरूर करनी चाहिए, बात भी करनी चाहिए, गुस्से को साइड में रखना चाहिए और शेयरिंग भी करनी चाहिए। शेयरिंग सिर्फ ये नहीं होती कि आपने अपने पैसे शेयर करे या फिर अपना जो मील आप लाए हैं वो आपने किसी के साथ शेयर किया, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको अपनी बात भी ना लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, इससे भी आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, इससे भी आप बहुत हल्का फुल्का महसूस करते हैं। तो अपनी बातें भी अपनों के साथ जरूर शेयर करा करें। अगर आप कोई आपका कोई लॉयल फ्रेंड है, कोई आपका लॉयल कुलीग है, तो प्लीज उसे जरूर शेयर किया करें, इससे भी बड़ा अच्छा लगता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप जिसे शेयर कर रहे हैं वो कैसा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात ना बस हर वक्त अपने दिल में ही रखते हैं, लेकिन मैं कहती हूं कभी कभी ना अपनी बातों को भी शेयर करना चाहिए, इससे भी आप बहुत हल्का महसूस करते हैं, यू फील सो गुड। तो इसीलिए अच्छा महसूस किया करें और हंसते मुस्कुराते रहा करें। भाई ये तो फातिमा खान का रोजाना की बुनियाद पर देने वाला पैगाम है आप लोगों को। सो आई होप सो कि आप लोग इस पैगाम को फॉलो करते होंगे और हंसते मुस्कुराते रहते होंगे, और जब भी हंसते हों अगर आप लोग हमें याद करते हैं तो जी ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलिए जी, तो फिलहाल हम चलते हैं ब्रेक के जाने, बातें वापस ट्रैक के साथ, मेहंदी हसन की आवाज आपको सुनाएंगे और फिर हम जल्द ही वापस आएंगे।
1: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
2: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
3: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
2: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं, सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
3: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
1: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

Yes, everybody, और इसी के साथ साथ प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का वक्त हुआ जाता है खत्म और होगी मेरी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात बहुत जल्द। मंडे टिल सैटरडे हम होते हैं आपके साथ मौजूद, तो रखें अपना भरपूर ख्याल, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। गर्मी की शिद्दत है बरकरार, तो पिए खूब सारा पानी और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एवरी वन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो,
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
5: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
6: ये क्या है भाई?
5: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
8: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
9: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
10: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
11: घर के अफराद और आमदनी में तवाज़ुन
12: हमारी जिम्मेदारी है।
13: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
14: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
15: FM 100, 31 साल FM 100, आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
16: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।
17: It's 2 PM. This time check is brought to you by
7: Yellow by Jazz Cash.
5: अभी Jazz Cash app download करो और Yellow के through payment करो।

0: पाकिस्तान, दिस इज मी फातिमा खान और आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान. आप सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया. ये प्रोग्राम पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी और एटको ग्रुप के तावन से पेश किया जा रहा है, जहां पर आज हमारा मौजूद गुफ्तगू आप लोगों के साथ है ज़ैबतीस ने मर्दाना हार्मोनल मसाइल और इनका हल. जी हाँ, इस हवाले से आगाही आप लोगों तक फराहम करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम, डायबिटीज थायराइड एंड हार्मोन स्पेशलिस्ट, MBBS FCPS मेडिसिन एंड FCPS डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी LUMSH जामशोरो, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आगा खान हॉस्पिटल हैदराबाद. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम फातिमा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन.
0: यू वेलकम सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं.
1: बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा, और मैं भी आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने हमें मौका दिया, पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी को मौका दिया कि हम आप लोगों के साथ मिलकर अवामी आगाही के प्रोग्राम करें और अपने पेशेंट्स को डॉक्टर्स कम्युनिटी में अवेयरनेस और आगाही पहुंचा सकें.
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल. तो आगाही का सिलसिला अब हम शुरू करते हैं, लोगों तक मालूमात फराहम करते हैं. सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि मर्दों में ज़ैबतीस की शरह कितनी है और इसके बढ़ने की अहम वजूहात क्या है.
1: अच्छा देखिए फातिमा, मैं अगर पहले तो जर्नली बात करूं कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में शुगर की शरह तेजी से बढ़ती चली जा रही है और हर तीन में से एक शख्स शुगर की बीमारी का यहां शिकार है. अगर आपने सवाल किया है कि मर्दों में, तो एक इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की जो सर्वे थी 2024 में, उसके मुताबिक मर्दों में कंपेयर टू फीमेल्स शरह ज्यादा है. ऑल तो डिफरेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अमूमन फीमेल्स के अंदर जो ये प्रेवेलेंस है वो तकरीबन 10% के करीब है. तो मोर और लेस तकरीबन देखा जाए तो मर्दों में डायबिटीज की शरह कंपेयर टू फीमेल्स ज्यादा है.
0: ओके, यानी कि मर्द हजरात ज्यादा इस वक्त जो है वो डायबिटीज से मुतासर है. बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले हमने ये बात जानी है. अच्छा सर, डायबिटीज की इब्तदाई अलामात कौन सी है जिन्हें अगर लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
1: देखिए अक्सर लोग अलामत का इंतजार करते हैं कि कोई अलामत हो. आम अलामत में देखा जाए तो पेशाब का ज्यादा आना, वजन का तेजी से बढ़ना या वजन का कम होना, सुस्ती, थकावट, इस तरह की अलामत होती है. इंतजार नहीं करना है और आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपकी उम्र 35 साल तक पहुंच जाए, चाहे वो मर्द है या औरत है, उन्हें अपनी शुगर को चेक करना चाहिए. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी अलामत जैसे पेशाब का ज्यादा आना, गैर जरूरी वजन का बढ़ना या कम होना, या कोई पैर में जख्म बन जाता है वो वक्त पे ठीक नहीं हो रहा, तो आपको चाहिए कि आपकी शुगर पहली फुर्सत में चेक कराए. या इसके साथ साथ अगर आपके खानदान में भी शुगर है तो आपको चाहिए कि अलामात का इंतजार ना किया जाए और अपनी शुगर को चेक किया जाए.
0: बिल्कुल ठीक है. अच्छा सर, जहां तक बात अभी आपने किया कि शुगर का अलामात का इंतजार नहीं करना चाहिए, जरूर टेस्ट कराना चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है. आजकल बहुत तेजी से जो है ये शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला आम चल रहा है. अच्छा सर, मर्दों को बकायदा शुगर और कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट किस उम्र से कराना चाहिए, या 35 साल की उम्र से ही.
1: बिल्कुल एग्जैक्टली, अब जो ये आपका सवाल है, अगर देखें अक्सर लोग समझते थे कि जब मेरी उम्र 50 साल तक पहुंच जाएगी तो मैं अपनी शुगर को चेक करूंगा, यानी ये बीमारी बुढ़ापे में आ सकती है. लेकिन अभी जो नई रिकमेंडेशन है कि वो शख्स जो कि 35 साल तक पहुंच जाए, चाहे उसके खानदान में किसी को शुगर है या नहीं है, उसको कोई अलामत है या नहीं है, या उसको किसी किस्म की तकलीफ है या नहीं, उसको चाहिए कि 35 साल की उम्र में पहुंचने तक वो शुगर चेक करें. लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं कि छोटे लड़के लड़कियां जिनका वजन ज्यादा है, बच्चों की बात करूं तो वो अगर 15 साल भी है, उनको लगता है कि उनका वजन उनके कद के मुताबिक ज्यादा बढ़ता चला जाए जा रहा है, तो उन्हें भी चाहिए कि वो वजह इसके कि किसी उम्र का इंतजार करें, शुगर जरूर चेक किया करें. या अगर किसी वालदैन को लगता है कि हमारे बच्चों में हाई शुगर की अलामत आ रही है, बच्चा बार बार पेशाब के लिए उठ रहा है, या उसको मिसाल किसी किस्म के जख्म बन रहे जिस्म पे जो कि ठीक नहीं हो रहे, तो उनको भी चाहिए कि अपनी शुगर चेक किया जाए. तो ये मर्द और औरतों दोनों के लिए जरूरी है कि बगैर किसी इंतजार के 35 साल की उम्र तक अपने पहुंचने के बाद अपनी शुगर जरूर साल में एक दफा चेक किया जाए. और अगर आपकी शुगर ठीक आ रही है तो कोशिश करें कि हर साल उसको चेक किया जाए, और एहतियात जरूरी है सबके लिए, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके खानदान में शुगर शामिल होती है.
0: बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा आपने जरूरी बात बताई इस वक्त लोगों को, क्योंकि वाकई में हम इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर जब वक्त आने पर हम चेक करा रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है. अच्छा सर, अभी आपने कहा कि अभी आप कह रहे हैं कि छोटे बच्चे भी हैं, मतलब लड़के, वो भी चेक कराएं, और मर्द हजरात तो 35 साल की उम्र के बाद लाजमी से चेक कराएं, तो सर मैं ये बताना चाहूंगी क्योंकि हम पब्लिक अवेयरनेस मैसेज जो है ये प्रोग्राम चल रहा है हमारा, तो इसके थ्रू आप ये बताएंगे कि सर कौन सा टेस्ट, कोई स्पेसिफिक टेस्ट है या फिर नॉर्मली आपने अपनी सिर्फ शुगर को टेस्ट करना है?
1: फातिमा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. अच्छा, बच्चों के लिए जो मैंने कहा है वो उन बच्चों के लिए कि जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है. हर बच्चा नहीं, क्योंकि वो एक बच्चों में भी वालदैन में भी कंफ्यूजन आ जाती है. वो बच्चे जिनका वजन तेजी से बढ़ता चला जा रहा है या उनको किसी किस्म के अलामत हैं 18 साल, 20 साल, 22 साल, क्योंकि हम अपनी रूटीन प्रैक्टिस में देख रहे हैं. टेस्ट की जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है, तो सबसे जरूरी है फास्टिंग ब्लड शुगर चेक की जाए. कितनी फास्टिंग होनी चाहिए? कम से कम 8 घंटा 10 घंटे की फास्टिंग इज मोर देन सफिशियंट. उसके साथ साथ दूसरा टेस्ट होता है HbA1c, जिसको कहा जाता है, जो कि आपके पिछले 3 महीने की शुगर के रिकॉर्ड को बताता है. तो ये 2 बुनियादी टेस्ट होते हैं कि जो कि शुगर के मरीजों को कराना बहुत ज्यादा जरूरी है. और अगर इनमें से कोई एक टेस्ट खराब आ जाता है तो दूसरे टेस्ट से उसको कंफर्म किया जाता है. और कभी कभी हम रैंडम ब्लड शुगर वो भी करा जाए. अब उसकी अगर मैं रीडिंग्स की बात करूं तो फास्टिंग शुगर अगर 126 से ज्यादा आ रही है, HbA1c जो कि 3 महीने का 6.5 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको शुगर हो चुकी है.
0: बिल्कुल ठीक है. तो ये वो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं जो आपको कराने चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये बात कर रहे हैं. तो मैंने कहा कि जरा ये भी आगाही आप लोगों तक फराहम की जाए. आप लोग सब सुन रहे हैं प्रोग्राम हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया. ये प्रोग्राम पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी और एडको ग्रुप के तावन से पेश किया जा रहा है. डॉक्टर मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है ज़ेवतीस में मर्दाना हार्मोनल मसाइल और इनका हल. इस हवाले से आगाही फराहम करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सलीम मौजूद हैं. आप लोगों को काफी मालूमात फराहम कर रहे हैं. फिर ज़ेवतीस मर्दों की जिस्मानी ताकत और जिंसी सेहत पर कैसे असर डालती है?
1: अच्छा देखिए फातिमा, ये जो सवाल है जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है कि मेंस हेल्थ, इस पे अक्सर हमारे जो मरीज होते हैं वो भी अक्सर बात करने से शर्माते हैं. इसके साथ साथ हम इस मौजू पे अक्सर और बेशतर देखते हैं कि बात नहीं की जाती है. डायबिटीज के हमारे जो मर्द हजार शिकार होते हैं, उनके जहन में आता है कि उसकी वजह से इनको कमजोरियां हो जाती है मुख्तलिफ किस्म की, चाहे वो जिस्मानी कमजोरी की बात करें या जहनी कमजोरी की बात करें. कभी उनका ख्याल ही होता है कि शुगर होने के साथ साथ ये कमजोरियां इसमें शामिल है. तो एक जो शुगर किसी भी मर्द की अगर अनकंट्रोल्ड रहे, मुस्तकिल 300 की शुगर आ रही है, तो वो उनकी जहनी और जिस्मानी कुव्वत को दोनों को मुतासर करती है. इसके साथ साथ कुछ मरीजों का ये ख्याल होता है कि कुछ उनको हार्मोन्स के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं अगर उनको शुगर हो चुकी है. तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको किसी भी मर्द को या किसी भी लेट सपोज औरत की भी बात करूं, उनको शुगर हो जाए तो उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, ऐसा नहीं है. अगर हाँ आपकी शुगर मुस्तकिल कहीं सालों तक 300 से अबव रहे, आप ख्याल ना करें, तो जाकर आपकी दूसरे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकती है. यानी कि मर्दाना हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन की बात की जाती है, वो डिस्टर्ब हो सकता है या उसके जो असर होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर वो बेशतर मरीज शिकायत करते हैं कि उनको मर्दानी कुव्वत में कमजोरी का एहसास होता है या जिस्मानी कुव्वत की कमजोरी की शिकायत करते हैं कि सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल होती है, अपने रूटीन के काम करने में भी उनको थकावट का एहसास होता है, सुस्ती होती है, चिड़चिड़ापन रहने की शिकायत होती है. तो ऐसे अफराद जिनको शुगर होता है उनको जरूरी है कि अपने शुगर को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है. उसके साथ साथ कोशिश ये करें अपने जो रूटीन टेस्ट हमने बात की उसको भी जरूर चेक कराना चाहिए. और साथ में ये जो हमारे बाकी टेस्ट होते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट चेक कराना, किडनी के टेस्ट चेक कराना, वो भी उनके लिए जरूरी है ताकि देखा जाए कि क्या शुगर की वजह से ये इन पेचीदगियों का शिकार तो नहीं हो रहे, जिनकी वजह से इनको ये कमजोरियां वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है.
0: बिल्कुल ठीक है. तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं जिसका आपको डॉक्टर मोहम्मद सलीम बता रहे हैं. बिल्कुल. अच्छा सर, डायबिटीज के मरीज रोजाना जिंदगी में कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर को अपनाएं

0: स्टॉक रखते हैं तो वाइल्ड राइस इस्तेमाल क्या करें, महीने में कभी एक दफा दावत हो जाती है तो मजबूरन खाना पड़ जाता है। तो हम मरीजों को मशवरा देते हैं कि आप ऐसी जिंदगी ना बनाए कि जिसमें आप करते हैं इंटरमीडियंट फास्टिंग की, 3 महीने इंटरमीडियंट फास्टिंग करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। आप चाहें तो ऐसी जिंदगी अपनाए क्योंकि हमेशा आप उसको अमल कर सके। खुराक आपकी हद में जरूर, फ्रूट का इस्तेमाल करें, जूसेस को अवॉइड करें, चिकन खाएं, चिकन टिक्का खाएं आप, पराठे का इस्तेमाल ना किया करें, आप कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके डॉक्टर मशवरा देते हैं, आप मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ को अवॉइड करें। तो ये वो चीज है कि जो कि आपको आपकी शुगर के कंट्रोल, आपके वेट के कंट्रोल और आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है।
1: बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अभी आपने बात की खाने पीने के हवाले से भी, आपने कहा कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं, इससे बड़ा फायदा भी हो सकता है आपको। तो सर अभी आम का सीजन चल रहा है तो मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त जो जो लोग हमें सुन रहे हैं, आम सबका बड़ा एक पसंदीदा तरीन फल है, तो क्या ज्यादातर इसके मरीज आम को खा सकते हैं या एतदाल से खाना है, कि आम का जरा आप प्लीज हमारे सुनने वाले को बताएं।
0: देखिये बड़ी एक सीजन है और अक्सर हमारे पास मरीज सवाल करते हैं, तो देखिए अल्लाह ने एक जो चीजें दुनिया में लेकर आया है तो उसका मना तो नहीं कर सकते, लेकिन एतदाल से जो आपने बात की कि एक छोटा सा आम खाने की इजाजत है, जिसपे हमारे पास पाकिस्तान में एक स्टडी भी हो चुकी है कि कंट्रोल कितना रहता है, यानी कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना बुरा नहीं कि वो आपकी शुगर को बहुत बढ़ाते, लेकिन एक वो मरीज जिसकी ऑलरेडी शुगर 300-400 के करीब आ रही है और वो उसके बाद मुझसे ये सवाल पूछे कि डॉक्टर साहब मैं आम भी खाऊं, तो मैं कहूंगा कि पहले शुगर का कंट्रोल अगर बेहतर हो जाए तो उसके बाद हम आपको कहेंगे कि एक छोटा सा आम रोजाना की बुनियाद पर आप खा सकते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं पूछते कि डॉक्टर साहब मैं बिरयानी को बंद कर दूं, क्योंकि देखिए बिरयानी हम हर जुमे को रूटीन है लोगों का अक्सर कि बिरयानी तो खानी है, तो वो अगर बंद कर दी जाए, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल बंद किया जाए, कोल्ड ड्रिंक्स को बंद किया जाए, तो शायद वो ज्यादा जरूरी, आम शायद आपको इतनी शुगर नहीं पड़ा है, तो अगर कंट्रोल अच्छा है एक छोटा सा आम खा सकते हो।
1: एक छोटा सा आम खा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। तो ये मैंने कहा एक जरूरी बात है तो जरा पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से। तो इस वक्त हमारे तमाम सुनने वाले और देखने वाले आम खाएं लेकिन एक छोटा सा खाएं, जज्बाती होकर ना खाएं, क्योंकि अपने ज़ेवतीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया। ये प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी और एक्ट्रो ग्रुप के तावन से पेश किया जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ेवतीज में मर्दाना हार्मोनल मसाइल और इनके हल पर गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुझे भी बताइएगा कि ज़ेवतीज में मरीजों को रोजाना कितनी वर्जिश और चहलकदमी करनी चाहिए, ये आजकल खत्म ही हो रही है सोसाइटी से, तो ये भी बताइए।
0: अक्सर लोग कहते हैं और हम सुनते भी हैं और सब जानते भी हैं कि आधा घंटा वॉक करें, घंटा वॉक करें। देखिए अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने, जब हम देख रहे हैं दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है, आप और हम अगर बैठे हुए हैं, टाइम नहीं हमारे पास वॉक करने का, तो उन्होंने अब ये रिकमेंडेशन दी है कि आप कहीं पे भी किसी भी ऑफिस में बैठे हुए, आपको चाहिए कि आधा घंटा गुजरने के बाद आप 5 मिनट की अपनी वॉक या चहलकदमी शुरू कर दें। यानी कि हम अक्सर देखते हैं, अगर हम डॉक्टर्स कम्युनिटी की बात करें, आप लोगों की बात करें, 5-5 घंटे कुर्सी पे बैठे रहते हैं, हमें अंदाजा नहीं होता वक्त कब जाता है, तो एटलीस्ट आधे घंटे के बाद आप 5 मिनट थोड़ा सा कॉरिडोर में चल लिया करें, ये भी आपके वॉक के लिए बेहतर है। इसी के साथ अगर आपके लिए मुमकिन है तो कम अज कम हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक अगर आप कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा। ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि तेज तेज चलना खाली पेट, ताकि आपको थोड़ा सा सांस फूलता हुआ महसूस है और पसीना आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि आप प्रॉपर तरीके से वॉक कर रहे हैं।
1: बिल्कुल ठीक है, तो ये आपने करनी है वॉक, जो कि बड़ी जरूरी हकीकत है। अच्छा सर, क्योंकि अभी हम मर्दों की सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक ये चीज भी तो है, जहां वॉक को मद्देनजर रखते हुए गुफ्तगू की जाए, तो आजकल हर जगह जाने के लिए बाइक्स इस्तेमाल करते हैं सब, तो वॉक तो इस लिहाज से बिल्कुल ही खत्म हो गई है।
0: देखिए बदकिस्मती ये है कि हम जो है समझते हैं कि साइकिल पे घूमना जो है ना, ये कोई एक हमारे लिए कोई अजीब सी बात है। अगर देखें आजकल का दौर है, महंगाई महंगाई है, अगर हम साइकिल का सही तरीके से इस्तेमाल भी करें तो वो भी आपकी एक प्रॉपर तरीके से वर्जिश है। हम घर से निकलते हैं सोचते हैं कि शायद हमें अगर किसी छोटे से काम जो कि 5 मिनट की वॉक पर है तो वो भी हम कोशिश करते हैं बाइक पे करें, तो हमें अपना तर्ज़ जिंदगी लाना पड़ता है। और आप अगर देखें तो स्टडीज में ये है कि अगर आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज हो या वॉक करें तो उसके साथ भी आपके मर्दाना हार्मोन्स के लेवल बढ़ते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रॉपर एक्सरसाइज से उसका लेवल बढ़ जाता है और आपकी स्ट्रेस हार्मोन जो दिमाग में होते हैं वो भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी वाली अलामत होती है वो भी वॉक के साथ काफी हद तक कम हो जाती है।
1: बिल्कुल सही। अच्छा सर, अब एक बड़ा ही अहम सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं क्या बल्कि सभी जानना चाहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या ज्यादा मीठा खाने से वाकई ज़ेवतीज़ हो जाता है या बुनियादी वजह है ये?
0: हाँ देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अगर आपको किसी भी शख्स को शुगर है तो वो कौन सी किस्म है। अगर हम स्पेसिफिकली की बात करें टाइप 2 डायबिटीज, जो कि दुनिया में शायद 80-90% टाइप 2 डायबिटीज के मरीज है, तो वो गैर जरूरी मीठा खाने से, वॉक ना करने से, वजन बढ़ने की वजह से हो सकती है। तो देखिए, अगर किसी को शुगर नहीं है और वो समझता है कि मुझे ज्यादा मीठा खाना चाहिए, तो ये हकीकत नहीं है। अगर आपको शुगर नहीं है, बहुत अच्छी बात है आपको, लेकिन मीठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आपके खानदान में शुगर है तो आपको हर साल अपने शुगर का चेक कराना चाहिए। तो मीठा तो मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा है बहुत ज्यादा खाना। और चाय में अक्सर देखा जाता है कि 4 टीस्पून शुगर डाल दी जाती है, 3 टीस्पून शुगर डाल दी जाती है। अलॉन्ग विद दैट फिर हम देखते हैं कि उसके साथ बेकरी आइटम्स, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत ज्यादा हो जाते हैं चीजों में। तो मेरा तो ख्याल है कि हम सबको इस हवाले से, चाहे वो शुगर के मरीज हैं या नहीं है, मिट्टी का इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क पहले ही शुगर के मरीजों में पहले नंबर पर आ चुका है। किस वजह से? क्योंकि हमारे यहाँ पर वॉक का रुझान, मिठे का रुझान, बिरयानी का इस्तेमाल, पकौड़ों का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि वो लोग जिनको शुगर नहीं है वो भी मीठा ना खाएं ज्यादा, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। एक तो कैलोरीज इनटेक भी ज्यादा है और आप डायबिटीज के रिस्क की जानिब भी जा रहे हैं ना, है ना सर?
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, रिस्क बढ़ता है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये मत सोचे कि आपको डायबिटीज नहीं है तो आप ज्यादा मीठा खा सकते हैं। नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने गुरेज करना है, क्योंकि मीठे का ऐसा कोई फायदा नहीं है। कभी कभार खा लिया तो चलो ठीक है। अच्छा सर, स्ट्रेस, ज़हनी दबाव डायबिटीज और मजमूई सेहत पर कैसे असर डालती है?
0: देखिए, ये बहुत मैं समझता हूँ कि अक्सर लोग हमें आके क्लिनिक पे बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे टेंशन से शुगर हो चुकी है। और मेरा सवाल उनको ये होता है कि देखिए, आपको टेंशन की वजह से शुगर नहीं हुई है, हाई शुगर की वजह से आपको हर बात टेंशन महसूस हो रही है। यानी कि अक्सर लोग समझते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे टेंशन थी जिसकी वजह से मुझे शुगर नहीं। अगर आपकी शुगर हाई है, 300, 350, 250 में चल रही है, तो आपको हर छोटी चीज जो है ना हिट करेगी ब्रेन में, और जिसकी वजह से आपकी जो सलाहियत होती है बात समझने की, फैसला लेने की, वो सारी की सारी जो डिसीजन होते हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं। तो ये हकीकत नहीं है। हाँ, अगर कोई

0: मीठा ना खाएं ज्यादा, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है. एक तो कैलोरीज इनटेक भी ज्यादा है और आप ज्यादा इसके रिस्क की जाने भी जा रहे हैं ना, है ना सर?
1: बिल्कुल बिल्कुल अच्छा
0: वेरी इंपॉर्टेंट है. तो आप लोग ये मत सोचें कि आपको डायबिटीज नहीं है तो आप ज्यादा मीठा खा सकते हैं. नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने गुरेज करना है, क्योंकि मीठे का ऐसा कोई फायदा नहीं है. कभी कभार खा लिया तो चलो ठीक है. अच्छा सर, स्ट्रेस, ज़हनी दबाव डायबिटीज और मजमूई सेहत पर कैसे असर डालती है?
1: देखिए, ये बहुत मैं समझता हूँ कि अक्सर लोग हमें आके क्लिनिक पे बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे टेंशन से शुगर हो चुकी है. और मेरा सवाल उनको ये होता है कि देखिए, आपको टेंशन की वजह से शुगर नहीं हुई है, हाई शुगर की वजह से आपको हर बार टेंशन महसूस हो रही है. यानी कि अक्सर लोग समझते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे टेंशन थी जिसकी वजह से मुझे शुगर नहीं. अगर आपकी शुगर हाई है, 300, 350, 250 में चल रही है, तो आपको हर छोटी चीज जो है ना हिट करेगी ब्रेन में, और जिसकी वजह से आपकी जो सलाहियत होती है बात समझने की, फैसला लेने की, वो सारी की सारी जो डिसीजन होते हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं. तो ये हकीकत नहीं है. हाँ, अगर कोई दोनों मिलके जो है आपकी

Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan.

Rahim Yar Khan, Multan.

0: वतन।
1: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
3: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा।
4: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया। अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
7: facebook.com/FM247365 FM247365

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: कूल किंग। बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
5: ये क्या है भाई?
4: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
7: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें। धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
8: facebook.com/fm247365 fm247365.

ओके जनाब, वेलकम बैक. सो आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड आप लोग मैसेजेस बिल्कुल कर रहे हैं हमें 3636 पर एंड साथ में जो है facebook.com/orchid.jasmin पे भी आप हमें मैसेज कर रहे हैं. यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर योर ट्रैक्स. ओके, सो पेज पे हमारे पास मैसेज आया है, निगहत का मैसेज आया है. वालेकुम अस्सलाम निगहत, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं. एंड शी हैज रिक्वेस्टेड फॉर द सॉन्ग कॉल्ड ढोला बाय आयमा बेग एंड सार अली बगा. ठीक हो गया निगहत, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. अख्तर अली ने हमें मैसेज किया है, हेलो कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं. ओके, जीशान अफजल ने मैसेज किया है हमें, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं जीशान, आप बताइए आप कैसे हैं. एंड कहा है धानी का OST प्ले कर दीजिएगा. ठीक हो गया जीशान, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, डेफिनेटली हम चला देंगे. इनफैक्ट इफ यू आर लिसनिंग राइट नाउ, सो आपका OST हम प्ले कर देते हैं धानी का. एंड फिर ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम निगत की रिक्वेस्ट प्ले करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी द OST ऑफ धानी. मिलते हैं इस गाने के बाद.

0: जी जनाब, वेलकम बैक. सो यू आर लिसनिंग टू एफएम 100 पाकिस्तान. ऑलराइट, सो आज हम बात करने वाले हैं शो पे. द टॉपिक इज व्हाट इज योर ड्रीम बिजनेस. ड्रीम बिजनेस के हवाले से बात करने वाले हैं. आप हमें बता सकते हैं कि आपका ड्रीम बिजनेस क्या है. लेट अस नो ऑन 3636 या फिर आप पेज पर मैसेज करके बता सकते हैं. जयपाल ने हमें मैसेज किया है, हेलो आरजे, रिक्वेस्ट है. ठीक है, मुझे ऑप्शंस भी बता दिए हैं, बड़ा अच्छा काम किया है. ठीक है, आदव असलम का आपके लिए हम चला देंगे तुम्हारी चुप सॉन्ग. सही है. और इसी के साथ साथ हमारे पास शाहिद का मैसेज आया. वालेकुम अस्सलाम शाहिद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताइए आप कैसे हैं. बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. एंड इसी के साथ साथ जो है बिल्कुल आप मैसेज करके बता सकते हैं व्हाट इज योर ड्रीम बिजनेस. यू कैन टेक्स्ट इन ऑन 3636 और अगर आप चाहते हैं तो आप पेज पे भी हमें मैसेज करके बिल्कुल बता सकते हैं. facebook.com/archer.jasmine. अब्दुल बाकर ने हमें मैसेज किया है, वालेकुम अस्सलाम, आपका शो अच्छा है, लव इट, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, रियली अप्रिशिएटेड. ठीक हो गया है, इन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है, हदीका कियानी का सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा, जानिया. ठीक है जनाब, डन है. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. सो मीनवाइल जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहेगा और ड्रीम बिजनेस के हवाले से आपने बताना है. 3636 पर मैसेज कर सकते हैं या फिर facebook.com/archer.jasmine पे भी मैसेज कर सकते हैं.
1: Listeners tell us about FM 100.
2: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
3: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work. It's
1: number one music station. FM 100.
4: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
6: पब्लिक सर्विस मैसेज. शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें. गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें. ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें. यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है.
7: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर ना आ जाए, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
8: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
9: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
10: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
11: FM 247365.
12: Genie in radio.

your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ, Jasmine. Jasmine. Now, welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan. It's 23 minutes past 3 on the dial right now. So, abhi humne Jaipal ka song play kiya tha. Hamare paas Rimsha ka bhi message aaya hai. Main bilkul theek hoon, aap bataiye. And song unhone request kiya hai Nakdako ka. Okay. Chale, hum ye play kar denge aapke liye. Thank you so much for your message. And Sumaiya ne hame message kiya hai. Page pe unhone hame message kiya hai. Aur dream business ke hawale se bataya. Badi interesting story batai hai unhone. Aur unhone kaha hai ki इनका ड्रीम बिजनेस शुरू से, एक तो इनको फैशन डिजाइनिंग का उन्होंने लिखा था, लिखा है बड़ा शौक था. एंड बोला बड़ी मुश्किल से और मेहनत के बाद और कुछ सेविंग्स थी इन्वेस्टमेंट करके मैंने अपना छोटा सा बुटीक खोला. वेरी नाइस, दैट्स ग्रेट. और ये कह रही हैं कि मुझे शुरू से कपड़ों के काम का बड़ा शौक है और स्टिल you know going with that. Zabardast, yeah, thank you so much for your message. और कह रही है शुरू में रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था लेकिन फिर उसके बाद जो है थोड़ा सब्र किया और मार्केटिंग अच्छी की, देन उसके बाद जो है अच्छा रिस्पॉन्स आया है. एंड नाउ इट्स गोइंग ऑन, इट्स स्टिल गोइंग ऑन और बड़ा अच्छा जा रहा है. दैट्स ग्रेट सुमैया, आपका इसी तरीके से काम अच्छे से चलता रहे. आमीन सुमामीन. और हाँ यार, असल में अगर हम किसी चीज़ को करने के लिए सोचते हैं ना, तो पहली चीज़ तो ये कि उसके लिए आपका इरादा बड़ा मजबूत होना चाहिए. सही है. और भले आपने कोई भी चीज़ करने का सोचा हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपकी जो एक इंटेंशन होती है और एक जैसे हम कहते हैं कि एम होता है, उसको बड़ा मजबूत करना पड़ता है. ठीक है. और उसको कंसिस्टेंट रखना पड़ता है. जैसे अब ऐसा नहीं कि एक महीना हमने सोचा, अगले महीने हमने बोला नहीं छोड़ो यार, नहीं होगा. तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. मतलब शुरू में ही बंदा हिम्मत हार जाए तो ये चीज़ बड़ी गलत हो जाती है. अगर आपने कोई चीज़ करने का सोचा है ना, तो उसको एटलीस्ट स्टार्ट लें. सही है. बाकी जो रिस्पांस आता है वो तो देखिए, हम शुरू में तो बिल्कुल भी उस रिस्पांस को जज नहीं किया जा सकता, उस फीडबैक को जज नहीं किया जा सकता, उस रिजल्ट को जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एवरीथिंग टेक्स टाइम. ठीक है. हर चीज़ में वक्त लगता है, चाहे वो काम के हवाले से हो, चाहे वो आप अगर कहीं कोई काम स्टार्ट करते हैं उस हवाले से हो, या छोटा सा आपने स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया है, या कोई सेटअप स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम. शुरू में हिम्मत हार के बैठ जाना बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है. सो इस चीज़ को जो है कंसिस्टेंट रखना. और जैसे अभी सुमैया ने हमें बताया कि शुरू में रिस्पांस बिल्कुल अच्छा नहीं था, ऑलमोस्ट इनको अपना छोटा सा बिजनेस जो है वो बता रही हैं कि सेट करते करते भी तकरीबन 1.5 साल लगा है. सो आप लोग हमें बता सकते हैं कि व्हाट इज योर ड्रीम बिजनेस, और मैसेज करके बता सकते हैं चाहे तो, या फिर आप पेज पे हमें मैसेज करके बता सकते हैं. ठीक है. या तो 3636 पर मैसेज करें या फिर पेज पे हमें मैसेज करें. सो मीनवाइल वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर ट्रैक एंड दिस इज गोइंग टू बी द सॉन्ग कॉल्ड आला बली. मिलते हैं इस गाने के बाद. हमारे साथ रहेगा.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो,
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
5: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
6: कूल किंग,
7: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
8: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
9: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
10: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
11: Genie in radio.

0: your location for maximum music.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM247365

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन OTP की तस्दीक या मखसूस USSD को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, PDA टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो OTP शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि PDA के पास शिकायत के अंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए PDA के टोल फ्री नंबर 0800-55055 पर राब्ता करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PDA।
8: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
9: FM 100, like us on is facebook.com/FM247365. FM247365.
10: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
11: Only music, no RJ talk.
10: This is FM 100.
12: Come on.

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
8: ये क्या है भाई?
7: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
9: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
7: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
10: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC।
4: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
9: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जस्ट कैश।
4: एंड
12: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
4: एंड
13: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
4: And
12: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
14: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
15: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
16: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
17: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: AGS ट्यूबलेट. लिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम.
4: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
1: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL.
5: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
6: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश.
7: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
8: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
7: And Lifebuoy anti-dandruff shampoo with yogurt and egg, 100% aage badho bina ruke.
9: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
10: FM 247365.

0: AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
3: बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज के लिए अहम पैगाम, सदर पाकिस्तान की खसूसी हिदायत और वजीर आजम पाकिस्तान के कैशलेस इकोनॉमी विजन के तहत बेनजीर कफालत प्रोग्राम की आइंदा किस्त की अदायगी अब होगी सिर्फ और सिर्फ बेनजीर मोबाइल सिम पर खुलने वाले डिजिटल वॉलेट अकाउंट के जरिए। तो जिन मुस्तहिक खवातीन ने अभी तक बेनजीर मोबाइल सिम नहीं ली, वो अभी अपना जाती मोबाइल फोन साथ लेकर करीबी BISP दफ्तर जाएं और अपनी बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करें। याद रखें, बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है। कतार ना इंतजार, खवातीन होंगी बाइख्तियार। बेनजीर का बेनजीर ख्वाब, हर औरत खुद मुख्तार बाइख्तियार।
4: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
5: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
6: ये क्या है भाई?
5: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
7: This program is brought to you by
0: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
8: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
2: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL,
9: and अगर आप हैं drive car, bike या रिक्शा driver तो 4 मई से 12 जुलाई तक weekly challenges में हिस्सा लें,
6: and जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ले लो by just cash,
2: and
10: live lighter, have a weight management conversation with your doctor today,
2: and
11: Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा,
2: and
10: Lifebuoy anti dandruff shampoo with yogurt and egg, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
12: Like us on facebook.com/fm247365
13: fm247365। توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل FM پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو FIA، سائبر کرائم ونگ، PTA یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
14: This is your music.

0: your location for maximum music. It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur
1: bhul ja. अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: 100 FM।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: 100 FM।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: 100 FM।
4: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB Bank for life।
3: 100 FM।
4: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
5: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: This program is brought to you by
7: AGS Tubular दिखाए काम, AGS Tubular Battery, दिल को है आराम,
8: and Cool King Hair Oil, जैसे चलता फिरता AC,
0: and HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
0: एंड
10: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय चेस कैश।
0: एंड
11: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
0: एंड
12: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
0: एंड
13: लाइव कॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
14: like us on facebook.com/FM247365.
15: FM 247365.

0: 6 PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
3: Ahmed, hatu wahan se.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
6: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
5: अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: कूल किंग।
8: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
9: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
10: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
6: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
5: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
12: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
13: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
12: एक दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
14: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
15: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
16: ये क्या है भाई?
17: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
18: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
17: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
6: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
5: अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking
2: aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath
1: HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
3: Cool King. Boss ki demands ne kar diya dimag ka system hang.
4: Lagao Cool King Hair Oil aur cool ho jao. Cool King Hair Oil, jaise chalta phirta AC.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking
2: aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath
1: HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
5: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खास वहां HBL.
6: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
0: This program is brought to you by
7: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. दिल को है आराम
4: एंड कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी
1: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
8: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
9: एंड जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश
10: एंड लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे

ज्यादा ही ना बात करते हैं. एनीवे थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इट येलो सिटी रेडियो 100 पाकिस्तान. आई एम वेरी नॉटी, यू गाइस नो दैट फॉर अ फैक्ट. एनीवे स्टे ट्यून्ड, आई एम कमिंग इन विद अ गुड नंबर एंड दिस इज बाय नासिया हसन एंड इट्स वन ऑफ माय डीपर्सनल फेवरेट्स.

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो,
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: कूल किंग। चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
4: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
3: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
5: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
6: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
7: ये क्या है भाई?
6: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
8: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: पीछे पीछे पीछे।
1: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
2: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
3: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
3: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
5: This program is brought to you by
6: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. दिल को है आराम।
7: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
8: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
10: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश।
11: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL. Cool King.
1: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम इसी बार, लेकिन बीपी हाई.
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
0: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: AGS ट्यूबलर, दिखाए काम. AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम.
2: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL.
6: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: एंड
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. ये लो बाय जस्ट कैश.
0: एंड
8: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.

0: hits 24 hours, non-stop vibration. Connecting you.
1: Connecting.
0: Holding you.
1: Holding.
0: With FM 100.
2: FM 100.
3: FM 100.
4: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
5: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
4: This program was brought to you by
5: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
4: And
6: Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
4: And HBL Freedom Account. Jahan khwab. वहाँ HBL
7: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
4: एंड
8: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय चेस कैश
4: एंड
8: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
4: एंड
9: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
4: And
8: Lifebuoy एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके
10: जरा बहन जरा बात तो सुनो हटो पीछे भागो अहमद हटो वहां से
11: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं घबराए नहीं समझदारी से काम ले सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत हुकूमत सिंध
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
12: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
13: कूल किंग
14: अबे देख के नहीं चलाता क्या
15: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों जब देखो
16: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा
17: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी
18: आम चीजों पर समझौता क्यों करें शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
12: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
7: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम
19: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
20: एक दो तीन येलो एक दो तीन येलो
21: ये क्या है भाई
20: एक जैकेट शूज हो या वॉच जो चाहे सेलेक्ट करो दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो तो क्या समझी
8: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो येलो बाय जैस कैश
20: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
12: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
22: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
4: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान,
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365.
6: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
8: Evening drive time. Food.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो,
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: कूल किंग। चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
7: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
8: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
9: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
8: दुनी दो दो दुनी चार।
10: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
12: ये क्या है भाई?
11: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
13: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
11: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: This program is brought to you by Tufaan Hai.
4: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: तोहीन रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस नौयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
7: facebook.com/fm247365 fm247365 evening drive time

0: 6:08 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Nikai Kaam, AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
2: Tufaan hai.
3: जरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो।
4: अहमद हटो वहाँ से।
5: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
6: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
7: ये क्या है भाई?
6: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
8: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
9: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
10: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
11: FM247365. FM 100.
12: 31 saal. FM 100. Aapki awaaz. Assalamu alaikum, Pakistan.
11: Assalamu alaikum, Pakistan. Pakistan.
13: Today's hit music.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
5: ये क्या है भाई?
4: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
4: FM 100. Like us on Facebook.com/

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफादेआमा के लिए वजारत इत्तिलात नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम खान। Across the nation.
4: This is FM 100.
5: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
0: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
6: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
7: ये क्या है भाई?
6: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
8: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
5: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
6: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
7: हमारी जिम्मेदारी है।
8: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: Like us on facebook.com/fm247365
3: fm247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
10: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
1: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Us on facebook.com/FM247365
5: Active,
6: yummy,
5: adorable, seven.
7: Say that guy crush on you.
8: Ye pyaas to suno yaar.

Rajana, welcome back to FM 100 और साथ साथ मैसेजेस आपके पहुंच रहे हैं 3636 पर. अच्छा जनाब, सबसे पहले बिलावल भाई ने गिजरी से मैसेज कर दिया. बिलावल भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है अयाज भाई, आपको और लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम. सर कैसे हैं आप? दिन कैसे गुजर? यार आज तो शदीद गर्मी थी भाई, गर्मी एंड था आज तो कराची में भैया. पिछले दो चार दिनों से जो है सही दोजख की प्रैक्टिस हो रही है. जो अमाल है, हरकतें ऐसी हैं. नदीम अंसारी भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं हमारे प्यारे से इंजीनियर. और इसके अलावा जनाब बस ऐसे गुजरा बिलावल भाई, इसी तरह गर्मी में गुजरा. इस्लाम कैसे हैं चाची संजीदा और सबको सलाम. जरीनूर, जरीनूर वालेकुम अस्सलाम. अच्छा जनाब संजीदा आ गई. संजीदा क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसी तबीयत है? और इतने प्यारे अंदाज में आपने वेलकम किया, वाह वाह वाह. मेरी जिंदगी ये गाना भी इनको पसंद आ गया है. भांजी कायनात के लिए अच्छा सा गाना भाई. ओ लेवल के पेपर भी खत्म होंगे, बेस्ट ऑफ लक भाई कि जो आपने पेपर दिए हैं वो अच्छे हों. हाँ ये कह रही कल आपके शो की कमी महसूस हुई, दिल उदास था. क्यों उदास चल रही है भाई? अच्छा जनाब कोई बात नहीं यार, छोटी छोटी बातों पे ना दिल को बिल्कुल उदास नहीं करना, मैं ये बता दूं आप लोगों को. तो भांजी जी के लिए मैं कौन सा ट्रैक प्ले करूं ये मैं सोच रहा हूं. ये ट्रिब्यूट है आमिर जकी को, तो यही गाना मैं इनको डेडिकेट कर देता हूं. और जनाब मैसेजेस करें कि अच्छा स्पेस टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर.

0: Volume with Ayaz Ahmed. 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end. Oh, so loud.
1: जरा बहन जरा बात तो सुनो हटो पीछे भागो अहमद हटो वहां से
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं घबराए नहीं समझदारी से काम लें सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें महकमा सेहत हुकूमत सिंध

0: AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
2: ये क्या है भाई?
1: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
1: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: Like us on Facebook.

रंजना वेलकम बैक सुन रहे हैं फिल्म 100 और साथ ही साथ मैसेजेस पहुंच रहे हैं 3636 पर भी, व्हाट्सएप पर भी, मैसेंजर पर भी। अच्छा जनाब गयासुद्दीन बलबन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम और सबको सलाम कह दिया, वालेकुम सलाम भाई। और कह रहे हैं लाहौर में तूफानी आंधी और बारिश हुई है शाम को। अच्छा जी अल्लाह खैर करे जनाब, लाहौर में जो लोग नेट के थ्रू जो वैसे अगर हमें सुन रहे हैं तो भाई जरा मैसेज वैसेज करें क्या सूरत हाल है। वैसे कराची में भी अब बारिश हो जानी चाहिए जो हालात चल रहे हैं। अच्छा जनाब इसके अलावा फरहीन शहजादी भी आ गई है भाई। फरहीन क्या हाल है आपके, ठीक है खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है। एफएम के चांद तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम सलाम। सिबिल भी आ गई, सिबिल जेवियर क्या हाल है सिबिल जी, ठीक है वालेकुम सलाम कैसे। मैं बिल्कुल ठीक, और आपकी फैमिली को सलाम दुआएं और तमाम लिसनर्स को भी। चले जी वालेकुम सलाम, गर्मी बहुत बहुत ज्यादा है, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बिलावल भाई को, रुबाब को और फारूक को, चाची को बहुत बहुत सलाम कह दिया, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब इसके अलावा तलहा का मैसेज आ गया है और वो कह रहे हैं आज भाई उस दिन आपने जो इंग्लिश ट्रैक बीच में थोड़े थोड़े प्ले किए थे वो बहुत अच्छा था, उसको जारी रखे। अच्छा भाई मैं कोशिश करता हूँ, वैसे मुझे भी मजा आया वो पुराने पुराने गाने ट्रैक्स जो थे। चले थोड़ा सा टाइम दे मुझे, तो चार पांच गाने मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश निकालता हूँ और उनको बैकग्राउंड में रख लेते हैं। अच्छा जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं, मैसेजेस करेंगे के अच्छा स्पेस टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर।

मुजम्मल जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100। और जनाब गर्मी में भी आज जरा तसल्ली से बातचीत हो रही है। अच्छा जनाब, तो कुछ चीजें मैंने निकाली हैं, थोड़ा थोड़ा जरा बैकग्राउंड में भी ये भी रखते हैं। बिली जोल, ये भी कमाल आर्टिस्ट थे यार। बिली जोल के गाने बहुत जबरदस्त थे और स्पेशली ये ट्रैक। अच्छा जनाब, बिलावल कह रहे हैं सर 13 जून से बारिश का बताया है, अल्लाह करे कराची में बारिश हो। आमीन सुम्मा आमीन मेरे दोस्त। आपके प्ले लिस्ट के की क्या बात है, हर सॉन्ग सुपर है। जरी नूर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उम्मे रुबाब भी आ गई। उम्मे रुबाब क्या हाल है, सलाम, और सब सुनने वालों को भी सलाम। कैसे हो अयाज? मैं ठीक हूँ रुबाब, आप बताओ तबीयत कैसी है? रोटी वोटी खा ली? नहीं, डिनर विनर हो गया? मालूम हम भी आ रहे हैं। क्या लिखा मुझे समझ नहीं आया, रुबाब क्या आ रहे हैं और आगे क्या मैं रुबाब समझ नहीं आया, वरना मैं पूरा मैसेज पढ़ देता। अच्छा जनाब, गाने पसंद आ रहे हैं संजीदा जी, क्या कहने, मालूम है मुझे आपको इस तरह के गाने बड़े पसंद है। अच्छा जनाब, और फरीन शहजादी क्या कह रही है, कह रही है आज वाकई अखीर की गर्मी थी, लग पता गया। हाँ जनाब, और वैसे भी इनके घर पे शादी की तैयारियां वगैरह भी हो रही है, तो शॉपिंग वॉपिंग ये तो लग पता तो जाना है। जनाब एक शादी का गाना भी है, फरीन ने जब से शादी का जिक्र किया एक आज शादी का गाना मैं क्यू शीट में रख लेता हूँ। अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाल बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मिजाज भी बिल्कुल ठीक है, और एज यूजुअल नाम नहीं लिखा लेकिन आइडिया हमें है फिर भी। हाय मिसेस फारूक भी आ गई हैं। मिसेस फारूक वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? राइट जी, नेक्स्ट ट्रैक के जाने बढ़ते हैं। और फरीन शहजादी आपकी सिस्टर, उनके होने वाले हस्बैंड के लिए।

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275 हैश, जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342 हैश। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीजिए।
4: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
0: Like us on facebook.com/fm247365
5: fm247365
6: Active, yummy,
7: adorable, zabardast.

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
4: ये क्या है भाई?
3: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बंद।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
3: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, पाकिस्तान
4: एक्टिव
5: यमी
4: जबरदस्त
5: प्यार तो सुनो यार।

हाय हाय क्या बात है? सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस पहुंच रहे 3636 पर। दिस इज फारूक कह रही है, ओ गॉड 10 बज गए, देखें आप जरा टाइम देखें, पर से लग जाते हैं टाइम को भी, अच्छी बात है वैसे, अच्छा टाइम बहुत ही स्पीड से गुजरता है जैसा कि यहाँ पे। अच्छा जनाब, आपके शो में हमेशा सॉन्ग गुड होते हैं, तेरे शो दे बिना मेरा दिल नहीं लगता, सलामत रहें। एम यूसुफ जई मेरे ख्याल से, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जनाब, इसके अलावा आयशा जी वालेकुम सलाम, हमेशा कई तरह शो लाजवाब। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी आयशा जी, और एक गाने की रिक्वेस्ट कर दी है। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रैक जो है ना वो मैं आपको डेडिकेट करता हूँ, जो आपने कहा वो तो नहीं है लेकिन स्लो ट्रैक है और आपको पसंद आएगा, और वो है कैसे जनाब, मैसेज करेंगे KHI स्पेस, टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर। क्या बात है इस ट्रैक की भी।

जनाब क्या बात है इस ट्रैक की भी, और मिकाल हसन भी याद आ गया मुझे। वैसे ये गाना रुहान अब्बास ने गाया, लेकिन इस गाने की जो कंपोजिशन है वो मिकाल हसन ने दी। और जब ये एल्बम आया था तो FM 100 भी तशरीफ लाए थे और बड़े मजे की गुफ्तगू हुई थी उनसे, बहुत ही मजे के आदमी वो। क्या बात है जनाब, मेलोडियस ट्रैक में आपको सुना रहा हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक।

जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 आयाज अहमद के साथ, और साथ ही साथ पिका के मैसेज भी पहुंच रहे हैं। अफशीन कहनी, सलाम सर, आज सज्जाद अली का सॉन्ग, कुछ लड़कियां मुझे तंग करे, कौन कर रही है लड़की तंग? अफशीन नाम बताओ मुझे, लेकिन आज देखो क्यू शीट बनी हुई है। अफशीन तुमने तंग नहीं करना, फॉलो करना हमने उनको। बिलावल कहना, सर अब ये तो मामूल बन गया है, गलती हम खुद करते हैं और लोग सरकार पर इल्जाम दे देते शुरू कर देते हैं। हाँ ठीक है, यानी गलती हम करते हैं, इल्जाम हम सरकार के ऊपर। हाँ ये बातें वैसे काफी सही की आपने। अच्छा जी, इससे पहले मैंने दो मैसेज किए जो आपने रीड नहीं किए, पढ़ तो लिया। सबर तो कर, थोड़ा सबर कर बिलावल, थोड़ा सबर क्या करो, सबर बहुत अच्छी चीज होती है सेहत के लिए। और मिसेस फारूक को गाने कहनी, सूदिंग ट्रैक प्ले किया आपने, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा संजीदा जी कुछ देर के लिए चली गई, आ गई हूँ दोबारा, गहमा गहमी में सुन रही हूँ। अच्छा जी, बस जी काम भी चलता रहे साथ साथ और शो को भी एंजॉय करते रहे। फरीन शहजादी भाई गाने पसंद आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक जरा पुराना गाना मुझे मिला, क्यू शीट में मैं थोड़ी देर के लिए प्ले करता हूँ, बहुत दिनों बाद मुझे नजर आया। और ये आवाज बैंड का ये गाना तू ही जीत, थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको।

पॉइंट आप सुन रहे हैं एफएम 100। और थोड़ी सी रिकॉर्डिंग, क्योंकि पुराना गाना है तो इतने मजे की नहीं है, लेकिन मिसेस फारूक भाई क्या बात है, कह रही भाई आपका शो सुन रही हूँ तो गर्मी कम लग रही है, एसी के पैसे फटाफट। और ये सॉन्ग पहली बार सुना, अरे नहीं कह रहे सरकार, टीनेज दौर याद आ गया मुझे, तो स्कूल कॉलेज के दौर याद आ गया। और मैं हम लोग नए वीजे प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ था तो ये गाने उस दौर के 90s। अच्छा जनाब, और संजीदा जी भी शामिल हो गई, वाह वाह वाह क्या बात, गाना पसंद आ रहा है इनको। चलें जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जानिब।

जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100। और क्या बात है जनाब, इतने प्यार से मोहब्बत से मैसेज करने का शुक्रिया। और अयाज ब्रो, आप को एक सॉन्ग का कहा था, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज अगर प्ले कर दें, मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया है, मैं अगले मंथ जा रहा हूँ गाजा। शकील रोशन भाई, चले जनाब, वालेकुम सलाम। सबसे पहले बीच में सलाम भेज दिया आपने। अच्छा जी रोशन भाई, बिल्कुल मुझे याद है अरबिक ट्रैक का आपने कहा था, मैं अभी प्ले करता हूँ। मैंने एक आपके लिए स्पेशली रखा है भाई क्यू शीट में। हाँ मिसेस फारूक, क्या बात है, पूरी रिपोर्ट दे रही होती कि क्या सूरत हाल चल रही है, कौन सा गाना अच्छा है, कौन सा सही नहीं है, क्या बात है, जबरदस्त। और गाने फुल टाइम पसंद आ रहे हैं, और गाना ये वाला उनको बहुत अच्छा लगा है। और इसी तरह संजीदा जी भी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यानी भाई आप रोज आया करें भाई, मैं क्या करूं, मैं रोज तो आऊं लेकिन काम भी तो है दुनिया में, और भी क्या कह रहे हैं संजीदा जी। अच्छा जी, अब अरबी गाने की रिक्वेस्ट की शकील भाई आपके लिए खास तौर पर, ये

0: We'll be right back after this commercial break. Break. Break.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो. हटो पीछे, भागो.
2: अहमद, हटो वहाँ से.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं. घबराए नहीं, समझदारी से काम ले. सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत, हुकूमत सिंध.
4: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो.
5: ये क्या है भाई?
6: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: FM 24/7 365
3: Active,
4: yummy,
3: adorable, zabardast.
4: Dekhiye pyaas to suno yaad.

जनाब वेलकम बैक टू एफएम 100 और बिलाल कह रहे हैं सर हम लोग छत पर बैठकर आपका शो सुने। बेटा छत का ठीक है लेकिन किसी दूसरी छत पे नजरें मत रखना, वो भी बुरी बात होती है। अक्सर ऐसा होता है छत पे चले जाते हैं, इर्द गिर्द के लोग परेशान होते हैं कौन आ गए ये लौंडे। तो बहरहाल बिलाल भाई तो तमीज के आदमी है, बैलेंस भी साथ साथ करो बिलाल भाई, देख लो। अच्छा जनाब और इसके अलावा उमर के मैसेज पहुंच गए हैं 3636 पर और हो फ्री हो गया फोन करें। यार अयाज कमाल शो करते हो वाकई में, बड़ी मेहरबानी और सॉन्ग्स का तो जवाब नहीं, बहुत शुक्रिया उमर भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ ये बैकग्राउंड में यार ये ट्रैक भी इंग्लिश गानों की ना सारी जो ख्वाहिशात है ना मैं यहाँ आके इस तरह पूरी कर लेता हूँ बैकग्राउंड में रख के। मैं जनाब अब मैं जरा आपको एक बड़ा ही सीरियस गाना और बड़ा मेलोडियस ट्रैक आपको सुनाने वाला हूँ और वो है कैसे बहुत आला गाना है, जरा चेक करें आप।

राइट नाउ वेलकम बैक टू एफएम 100 और मिसेस फारूक ने भी अच्छी बात लिखी, कह रही भाई सर्दियों में जिस सूरज को सेकने के लिए हम ढूंढ रहे थे वही सूरज हमें ढूंढ ढूंढ कर सेक रहा है आज। बिल्कुल बजा फरमाया। और कह रही है क्या गाना लगाया, सेंटी कर दिया। अरे मिक्स होती है हमारी क्यू शीट। और ये देखिए फौरन ये वाला ट्रैक भी लगा दिया। अच्छा जनाब, और अली हैदर भाई जो है ना धड़ाधड़ गाने बना रहे हैं, ब्रांड न्यू गाना बनाया उन्होंने दिल रंगीन, और जरा इसको चेक करते थोड़ा सा था, और गाने नोट आउट पूरी एल्बम ही बना दी है वैसे।

जनाब दिले रंगीन। अली हैदर भाई का जबरदस्त ये ट्रैक। अच्छा अली भाई पुरानी जींस से निकल नहीं रहे, फंस गए पुरानी जींस में, लेकिन लग अच्छा रहा ये वाला भी। वैसे भी एक स्टाइल होता है सिंगर का, और अली भाई कामयाब है इसमें। दिले रंगीन मुझे तो बहुत पसंद आया, आप बताइए भाई कैसा लगा आपको। भाई जनाब टाइम स्पीड से गुजरता चला जा रहा है, मैं कितने जावां चौधरी साहब। लो जनाब एक और ट्रैक खूबसूरत सा, और वो है कैसे

भाई जनाब सिक्वेंसर क्या बात है, जबरदस्त बैंड और इनका ये गाना अपने वक्त में बहुत हिट। संजीदा कह रही थोड़ा सा बदल लिया, थोड़ा सा नहीं काफी बदल लिया, लेकिन यार फ्लेवर वैसे ही है। उमर कह रहे हैं आज भाई शो की टाइमिंग तो बता दें, 9 to 11 रात को मेरे दोस्त मेरे भाई। और मिसेस फारूक बहुत शुक्रिया आपका गाने पसंद करने का, बात पसंद करने का। अच्छा जनाब कुछ गाने प्ले होने से रह गए हैं आज भी, काफी सारी क्यू शीट हम बना लेते हैं लेकिन हमारी बातें आप लोगों के मैसेजेस गाने वैसे रह जाते हैं। यार ये बड़ा फेवरेट ट्रैक है मेरा वैसे।

0: भाई जनाब इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हो रहा है खत्म।
1: नींद
0: कल सबक याद नहीं होगा, छुट्टी। अच्छा नहीं, कल इंशाल्लाह, कल की कल देखते हैं भाई, कल की कल देखी जाएगी इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कल आपसे मुलाकात हो रात 9 बजे से लेकर और 11 बजे तक। तब तक के लिए अयाज अहमद को दें इजाजत और मिसेस फारूक बहुत शुक्रिया गाने पसंद करने का, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया जो इतना अप्रिशिएट करते हैं। राजनाब अल्लाह हाफिज, रब रखा, खुदा पामान।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: AGS ट्यूबलेट, दिखाए काम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
2: Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365.
5: Let's celebrate
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: AGS ट्यूबलेट, दिखाए काम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
3: On facebook.com/fm247365 FM 247365

वेलकम बैक कहेंगे स्वयं आप सबको, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहली गजल पसंद आई होगी। मैसेजेस आपके आ चुके हैं जनाब। मेट्रोविल से अमीन भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नरीम भाई, बज़्म गजल बज़्म शायरी वीआईपी खूबसूरत शो, उमर बाब जी को उन्होंने सलाम कहा है और डेडिकेट कर दें। एक नसीबो लाल का सॉन्ग ये नहीं हो सकता, हम उनको कोई ना कोई अच्छी अच्छी गजल जरूर डेडिकेट कर देंगे आपकी जानिब से। अच्छा जी, मेरा नाम फहीम लोहार है, प्लीज मेरा सॉन्ग चलाओ, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे। वाह वाह वाह वाह फहीम लोहार साहब, लगता है कि आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम पर शामिल हुआ हूं नदीम भाई, और फहीम भाई चनेचर गोट से। फहीम भाई, हमारे मेरे जो शोज होते हैं पूरी वीक में, तो मैंने कुछ बांटे हुए हैं शो, कुछ शोज बांटे हुए हैं। जैसे मंगल वाले दिन जो शो होता है वो होता है ओल्डी गोल्डी क्लासिक का, जिसमें आप पाकिस्तानी मूवीज के पुराने बहुत पुराने ट्रैक्स जो है वो चलते हैं और आप लोगों की फरमाइश आती है। तो मंगल वाले दिन आपने जो गाने की फरमाइश की है, हम आपका नाम लेकर वो फरमाइश आपकी जरूर चलाएंगे। मंगल वाले दिन रात को 11 बजे से 1 बजे तक शो होता है, तो आप क्योंकि फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो लिहाजा आपको ये बता रहा हूं मैं। इसी तरह जुमेरात वाले दिन जो है बज़्म गजल बज़्म शायरी का प्रोग्राम होता है, इसमें हम जो है ट्रैक्स चलाते हैं वो होते हैं जनाब गजलें चलती हैं या मेलो किस्म के रोमांटिक किस्म के ट्रैक्स चलते हैं, दिल की बातें होती हैं। और बुध वाले दिन जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम होता है जनाब यंगस्टर्स के लिए स्पेशली, जो पाकिस्तानी नए पॉप ट्रैक्स हैं जितने भी, वो बुध वाले दिन चलते हैं। इसके अलावा जितने दिन होते हैं उसमें मिक्स ट्रैक्स चलते रहते हैं, हल्ला गुल्ला जारी रहता है। तो फहीम भाई, इतनी तफसील इसलिए बताइए कि आप फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहे हैं और शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, और आपके तवज्जो से बहुत सारे ऐसे मेरे प्यारे प्यारे से लिसनर्स जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हों तो उनको भी पता चल जाएगा। यासीन सोलंगी साहब कह रहे हैं, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं। सब सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है और रिक्वेस्ट कोई नहीं, आप पूरी ही नहीं करते, बस हाजिरी लगा दीजिए प्रोग्राम सुनते रहते हैं। यासीन सोलंगी भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सुनते हैं, ये आपकी मोहब्बत है, प्यार है। वैसे इत्तफाक होगा कि आपकी कोई रिक्वेस्ट पूरी नहीं हुई, वरना मैं तकरीबन हर एक की रिक्वेस्ट पूरी करता हूं दूसरे शोज में। इफ्तिखार साहब आ गए हमारे सलाम के बाद, कह रहे हैं नदीम भाई क्या हाल है, सदा सलामत रहे। सॉरी रात को आपका शो सुनते सुनते 2 बजे नींद आ गई थी, आंख खुली तो 4:30 बज रहे थे। अरे मोहतरम कोई मसला नहीं है, इस नींद का भी एक मजा है। और सलाम कैसे हैं आप? वाले साहब कैसे हैं? संजू और सबको सलाम कहा है। लाइट नहीं थी इसीलिए शो नहीं सुना। संजू ने बताया आपने याद किया है भाई, हमारी प्यारी सी बहन जरीन नूर, हम आपको हमेशा याद करते हैं जरीन, ये क्या बात हुई। असद साहब कह रहे हैं, आई लाइक ऑल सच पीपल हु रीच देयर ऑफिस इन टाइम, यू आर वन ऑफ देम, आई लाइक अ गर्ल बट शी इज वाइफ ऑफ माई फ्रेंड। असद भाई हमेशा ऐसा ही होता है, दूसरों की बीवियां वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि इंसान है ही बेकदरा, अपने पास जो है उसको कभी उस नजर से तो देखो। एक बड़ी मजे की बात बताता हूं आपको, हैरत होगी आपको, शायद हैरत हो। मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं इसलिए, और जहां तक पसंद का ताल्लुक है तो पसंद पसंद है, अगर एहतराम मोहब्बत मोहब्बत में अगर एहतराम है और आपने बताया नहीं हुआ, ये अपने दिल की बात आपने हमारे साथ की है असद साहब, तो आपकी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि आपके दिल में मोहब्बत तो है,
और वो आपने दिल में ही रखी हुई है, नो प्रॉब्लम। तो मैं बड़ी मजे की बात आपको बता रहा हूँ, स्पेशली शादीशुदा लोग जो हैं वो इससे जरूर महजूज होंगे, या उन्होंने अगर ऐसा अमल नहीं किया तो जरूर कीजिए। देखिए हकीकत ये है कि ये फैक्ट है कि आपको खवातीन जो है वो अट्रैक्ट करती हैं, शादी के बाद भी करती हैं, और वो इस तरह की बहुत सारी आपने मिसालें सुनी होंगी कि दूसरों की बीवियां बड़ी अच्छी लगती हैं, अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, दूसरों के बच्चे अच्छे नहीं लगते, अपने बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसा है ना, ये आपने सुना होगा, और हकीकत है ये, ऐसा नहीं है कि ये हकीकत नहीं है। प्यार की नजर से देखो तो सही अपनी बेगम को। अच्छा कभी कभी दिल करता है ना कि इंसान के यार डेट मारे, यार दूसरों को देख रहे हैं जो डेट पर हैं, घूम रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। मेरा दिल किया एक दिन, बहुत दिल किया कि यार डेट मारनी चाहिए, यार जवानी में लड़कपन में ये काम किए, अब कहां खो गए वो दिन, बस ये जहन में आना ही था। तो डेट के बारे में सोचा मैंने कि यार समंदर के किनारे बैठे हूं, आइसक्रीम खा रहे हूं, मैं उसकी तरफ देख रहा हूं, वो मेरी तरफ देख रही हो, हवा चल रही हो और सूरज को गरूब होते हुए भी देखें, फिर हाथ पकड़ के उसका टहलते रहें, बातें करते रहें, बहुत दिल किया। ये दिल किया तो बेगमात जो हैं ये आपकी ऐसी फीलिंग्स का बेड़ा गर्क कर देती हैं। लेकिन मैंने प्लान किया और बेगम को बोला कि एक शादी में जाना है, दोस्त की शादी है, आप तैयार हो जाइएगा, बच्चे नहीं जा सकते। वो तैयार हो गई, उनको गाड़ी में बिठाया और ले गया समंदर के किनारे। ये कहां आ गए, शादी में नहीं जाना? मैंने नहीं यार, आज मेरा डेट मारने को दिल कर रहा था तुम्हारे साथ। समंदर के किनारे उसके साथ बैठे, उसको देखा, मुस्कुराते रहे, हाथ थामा, टहले, आइसक्रीम खाई, बहुत मजा आया उस डेट में। इस वाक्य को हकीकत आप लोग भी बना सकते हैं। अच्छा थैंक यू वेरी मच, एंड यू लाइक द पीपल हु रीच देयर ऑफिस इन टाइम। वाह वाह वाह वाह। अच्छा जी, और हाय नदीम भाई, मैं महरीन बलोच सिंध दादू से। भाई मैं आपका शो 6 साल से सुन रही हूँ। अरे वाह भाई वाह। भाई आप एक सॉन्ग प्ले करना, सॉन्ग ये पीछे पीछे आए मेरे लग फचा। अच्छा ये कोई सिंधी ट्रैक होगा, और कह रही प्लीज भाई जरूर चलाइएगा। अच्छा मेरी प्यारी सी बहना महरीन बलोच, हम आपके लिए ट्रैक जरूर चलाएंगे, मगर आज के शो में नहीं चलाएंगे, हम कल के शो में चला देंगे, ठीक है, और आपका नाम लेकर चलाएंगे, ये वादा रहा। और अमीन भाई कह रहे हैं नदीम भाई मैंने अब तक उसको देखा, अच्छा तो नहीं है, बस सन सन कर उसकी मीठी सुन सुनकर उसकी मीठी आवाज से, लहजे से, अंदाज से मत पूछे हैं किस कदर मोहब्बत हो गई है, वो कौन है मत पूछिएगा। अरे हम नहीं पूछ रहे अब, मोहब्बत है ना, बस यही बहुत है। मैं समझता हूँ जिस इंसान के दिल में मोहब्बत है क्या बात है। और वैसे एक और इस हवाले से बड़ी मजेदार किस्म की बातें बताऊंगा आपको। अगर आपका ताल्लुक किसी इंसान से हद से ज्यादा गहरा होने लगे तो समझ जाना जुदाई का वक्त आ गया है। हाय जरीनूर कितनी खतरनाक किस्म की बात बताई है। तुझ ही पे खत्म है जाना, मेरे जवाल की सुबह तुलू
تجھ ہی پہ ختم ہے جانا میرے زوال کی صبح و طلوع بھی ہو جا کہ ڈھل رہی ہے ڈھل رہی ہو ڈھل رہی ہوں میں. زنی نور یہ آپ نے جو ڈاٹ ڈاٹ بنائے ہیں نا اس نے تجھ ہی ڈاٹ پہ ختم ڈاٹ ہے جانا ڈاٹ میرا زوال ڈاٹ تو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مصرعہ کہاں ختم ہو رہا ہے تو اس لیے مزہ نہیں آیا ہوگا آپ کو بھی. تو میری بہنا ایک پورا مصرعے کے ساتھ ڈاٹ لگائیں اس کے بعد پھر دوسرا مصرعہ. افتخار کہہ رہے ہیں ندیم بھائی میری میری میری فرمائش پر سے پیر سے پینڈنگ میں ہی ہم ہاں بالکل جناب آپ کی فرمائش جو ہے وہ پینڈنگ جو ہے وہ آج ضرور کمپلیٹ ہوگی اور ہوگی تو 2 بجے کے بعد ہوگی یہ ذہن میں رکھیے گا. امیر میٹرو ویل سے کسی سے ملنا بات کرنا اچھا نہیں لگتا جب سے دیکھا ہے تجھے کوئی دوسرا اچھا نہیں لگتا تیرے بارے میں دن بھر سوچتا رہتا ہوں لیکن تیرے بارے میں سب سے پوچھنا اچھا نہیں لگتا. ہائے ہائے سو سویٹ یار. اور کہہ رہے ہیں کہ سسٹر سنجو اینڈ سسٹر چڑیل اینڈ سلام ٹو آل ایف ایم 100 کی فیملی واہ واہ واہ واہ. اچھا جناب یہ میسجز 3636 کے آلموسٹ میں نے کمپلیٹ کیے ہیں اور میرے پیارے پیارے سے لسنر جنہوں نے مجھے دوسری جگہ میسجز کیے ہیں ان کے میسجز کی جانب اب جائیں گے ہم تو معذرت اتنا ویٹ کرنے کا. ان کا 3636 والوں کا پہلے حق ہے تو برا بالکل نہیں ماننا. لے کر جائیں گے آپ کو ایک اور بہت ہی پیارے سی غزل کی جانب اور یہ بھی نئی ہے. 2 بجے کے بعد ہم تھوڑی سی پرانی غزلیں چلائیں گے. ابھی آپ کو نئی نئی غزلیں سنا رہا ہوں تو سماعت فرمائیے.

वेलकम बैक. नहीं देखा टाइटल ऑफ दिस ट्रैक एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा. अच्छा, एक दो मैसेजेस पढ़ेंगे और उसके बाद दूसरे मैसेजेस की जानिब बढ़ेंगे. अस्सलाम वालेकुम जनाब एन ए भाई, कैसे हैं आप? तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है हमारे प्यारे से आदिल भाई ने लियारी से. यूसुफ भाई पापोश से भी आगे हैं और उन्होंने भी तमाम सुनने वालों को और FM 100 की तमाम फैमिली को सलाम कहा है, खुसूसी तौर पर हमारी प्यारी सी आंटी को.

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, वाह वाह वाह, आज की रात मेरे दर्द मोहब्बत सुन ले। हाय हाय क्या शेर है भाई, ये शेर हमें संजू को बहुत अच्छा लगा भाई। और कह रहे हैं ये माहौल बना दिया जरीन नूर ने और नौरीन के बेहतरीन इंतखाब ने। अभी तो उनके और भी इंतखाब है जो कि हमने शामिल है शो करना है। और आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। कादिर बख्श बलूच साहब कह रहे हैं, भाई आपको और सब सुनने वालों को सलाम, कैसे हैं आप, इस शो में हाजिरी लगा लें, ये बज़्म मुझे पसंद नहीं है। हाय ये आप लोग जब इस तरह के मैसेज करते हैं ना, यकीन मानिए कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। शुक्र इस बात का अदा करता हूँ कि आप लोगों की मोहब्बतें कितनी ज्यादा हैं यार, और पता नहीं मैं इस काबिल हूं भी नहीं कि आपको पसंद नहीं है ये बज़्म, लेकिन उसके बावजूद आप सुन रहे हैं, ये आपकी मोहब्बत है यार, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच और लव यू कादिर बख्श भाई। और अच्छा कह रही हैं जरीन नूर के भाई एक गजल हमारी संजू के नाम भी कर दीजिए। जरीन नूर भी बहुत प्यार करती है भाई लगता है मुझे संजू से। हाँ तो जरीन नूर मेरी प्यारी सी बहन, हम आपकी जानिब से एक बहुत ही प्यारी सी गजल संजू को डेडिकेट कर देंगे। अमीन कह रहे हैं बदला वफा का देंगे बहुत सादगी से हम, तुम हमसे रूट जाओगे और जिंदगी से हम। अरे इतने नाउमीदी वाले शेर क्यों लिख रहे हो मेरे शहजादे, प्लीज एने भाई गजल नुमा सॉन्ग। बहता प्यार ना कहीं बहुता प्यार ना करें। थैंक यू अमीन भाई, आपकी जानिब से हम अच्छी सी गजल डेडिकेट कर देंगे। इफ्तिखार कह रहे हैं नदीम भाई पता नहीं मोहब्बत कहां से आती है, कैसी होती है, जब मोहब्बत का शीशा टूटता है तो यकीन जाने रूह को चीर देता है, बहुत दर्द होता है, आगे में बहुत दर्द होता है। और जब ये शीशा टूटता है और दर्द होता है ना, तो इफ्तिखार भाई इस हवाले से बयान करना हर एक के बस की बात नहीं है। किस तरह दिखाएं यार अपना दिल कि कितना बुरी तरह चकनाचूर हुआ है, क्या क्या अरमान लेकर दिल बैठता है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। हाँ समझे समझे समझे, मैं भी जरीन से बहुत प्यार करती हूँ, उसे मेरी मोहब्बत का यकीन भी है, नौरीन बहना तो काबिले एहतराम है। वाह भाई वाह संजू। अच्छा जी सलाम नदीम, कैसे हैं आप भाई। मुझे तो आज तक ऐसी कोई मिली तक नहीं इस दौर में, गरीब सा अपना साया तक बाजार बेजार, गरीब से अपना साया तक बेजार होता है। के बलोच साहब, एन के बलोच साहब, भैया मैं आपको बताऊं कि मोहब्बत में ना अमीरी होती है ना गरीबी होती है, हकीकत है ये। हाँ ये अलग बात है, अगर आपको अभी तक कोई मिली नहीं ना तो इसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि आपके दिल को कोई भाई नहीं, वो दिल खुद आपको बताएगा ये है वो, इसको दिल दे दो आपका दिल आपको खुद बताएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा नहीं आया तो वो अभी आने वाला है। मेरे जादू के चिराग अपने मूड को सही करो, टीचर नहीं बनो फरहीन शहजादी, जादू का चिराग। और अमीन कह रहे हैं सिस्टर चुड़ैल वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये मुझे क्यों कहा गया कि टीचर ना बनो, हैं जी ते हैं जी। और अमीन कह रहे हैं सिस्टर चुड़ैल को कहें कि वालेकुम अस्सलाम,
पगली भाइयों की तरफ से पगली को आंखों को इंतजार के लम्हात सौंप कर नींदे भी कोई ले गया अपने सफर के साथ। आज अमीन भाई भी फुल टाइम जो है ना ओके टेक हैं जी।

जी बिल्कुल गुफरान भाई, मैं एक मैसेज के हिज्जे कर रहा था, समझ नहीं आ रहा, अभी कुछ ही देर में पढ़ते हैं वो। सलाम भाई, कैसे हैं आप? एफएम 100 की ऑल फैमिली को सलाम का है हमारे प्यारे से शहजाद बाबू साहब ने। और आज के शो में भी आप आए हैं भाई, क्या बात है, क्या बात है। और नौरीन मेरी बहना का इंतखाब अब हम एक और शामिल करते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने शाबाशी दी है, यानी कि वाह वाह संजीदा बहना, लाजवाब इंतखाब, जीती रहे, ये कहा है हमारी प्यारी सी बहन नौरीन ने। तो अब नौरीन का हम दूसरा इंतखाब शामिल करते हैं, कहती हैं, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो, मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा। मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूं, अगर अगर वो आया तो किसी रास्ते आएगा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। डॉक्टर बशीर बदर साहब का ये इंतखाब था, और दिल चाहता है अपनी मासूमियत पर एक किताब लिख दूं, पर डर लगता है कोई मेरा तलबगार ना हो जाए। नदीम भाई, कुछ दिन पहले मैंने नाहिद अख्तर की एक गजल की फरमाइश की थी, अरे हाँ हाँ हाँ, आपको शायद याद ना हो, चलें आपको याद करा देते हैं, और आपने याद कराया और मुझे याद आ गया। अब काफी दिन हो गए इसको भी, तो लिहाजा हमारी कोशिश होगी कि ये जरूर शामिल शो करें। तो अभी जनाब आपको एक गजल की जानिब लेकर चलते हैं, और ये गजल मुझे अच्छी लगती है, शायद आपको अच्छी ना लगे। आबिदा परवीन की आवाज है, और शायद मैंने पिछले हफ्ते भी चलाई थी, लेकिन अभी फिर चलाऊंगा भाई, सुनिए।

वेलकम बैक कहेंगे जनाब। म्यूजिक आपको सुना रहे थे ताकि आप थोड़े से आपका मूड भी अच्छा सा हो जाए, क्योंकि ये बैकग्राउंड है ये अच्छा है जी। अच्छा, एक और इंतखाब भेज दिया है फरीन शहजादी ने। फरीन

वेलकम बैक कहेंगे जनाब और शो को 120 चांद लग गए। मेरी प्यारी सी आंटी की ऐसे मेरी बात हुई अभी कुछ ही देर पहले और मेरी प्यारी सी आंटी सुन रही है, उनको उनकी गजल भी बहुत पसंद आई और तमाम सुनने वाले जितने भी हैं जो आंटी के लिए ढेर सारी दुआएं करते हैं उन सबको बहुत सारी दुआएं दी हैं आंटी ने और सलाम भी कहा है सबको, फर्दन फर्दन फर्दन फर्दन सबको जितने भी मेरे प्यारे प्यारे से लिसनर्स हैं। तो आंटी थैंक यू वेरी मच, जीती रहें, मुस्कुराती रहें, शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, दिल से दुआ है आपके लिए। और नौरी ने कहा है शुक्रिया जनाब, आपने ढूंढ कर मेरी फरमाइश पूरी कर दी। अरे जीती रहो मेरी बहना, कोई मसला नहीं है। और तानिया जी ने भी थैंक्स कहा है, तानिया जी यू मोस्ट वेलकम। और इसके साथ ही जनाब वक्त जो है वो फुर करके उड़ गया है। एक चीज और भी है मोहब्बत में, उसके हवाले से कुछ कहूंगा। कुछ लोग मोहब्बत नहीं करते मगर उनके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ खासियतें ऐसी पैदा की होती हैं, ये कह लीजिए कि अच्छे इंसान होते हैं और उनका अच्छा बर्ताव जो है वो सामने वाले के दिल को भा जाता है। उसमें चाहे सच्चाई कह लें, चाहे दयानतदारी कह लें, चाहे एहतराम कह लें, चाहे मेहरबानी कह लें, चाहे उसका सब्र कह लें, चाहे माफ करने की सलाहियत कह लें, चाहे मददगार होना कह लें या उसकी इंसाफ पसंदी कह लें, चाहे उसकी इंकिसारी कह दें, चाहे उसकी खुश अखलाकी कह दें, ये तमाम खूबियां जिस भी औरत में या मर्द में होती हैं वो अपनी तरफ हर एक को मायल करता है, खींचता है। हर इंसान चाहता है कि उससे मोहब्बत करें सब, और वो तो मोहब्बत करता ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे हर कोई मोहब्बत करे तो अपने अंदर ये खूबियां आप तलाश करें कि हैं या नहीं है। क्या आप सच बोलते हैं? क्या आप दयानतदार हैं? क्या आप हर एक का एहतराम करते हैं? क्या आप हर एक के लिए मेहरबान हैं? क्या आप में सब्र है? और क्या आप में ये सलाहियत है कि आप बड़ी से बड़ी बात को भी माफ कर दें? क्या आप में इतना जिगरा है कि अगर आपके पास कम भी है तो जरूरतमंद को दे दें या उसकी जरूरत को पूरा कर दें? क्या आप में इंसाफ करने की ताकत है, यानी कि अगर आपकी गलती है तो सामने वाले के सामने उसको तस्लीम कर लें? क्या आप में इंकसारी है? क्या आप खुश अखलाक हैं? कहने का मकसद ये कि ये चंद चीजें मैंने जो गिनवाई हैं, बस अपना एहतसाब कीजिए। इनमें से जिस चीज की भी आप में कमी है, मेरी नजर में तो हर इंसान में इन चीजों की मौजूदगी है मगर वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो इस्तेमाल कीजिए सच्चाई को, दयानतदारी को, एहतराम को, मेहरबानी को, सब्र को, माफ करने की सलाहियत को, मदद करने की सलाहियत को, इंसाफ पसंदी को, इनकसारी को और खुश अखलाकी को। इसके साथ ही चाहूंगा जनाब आपसे इजाजत और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते एक बहुत प्यारी सी मेहंदी हसन साहब की आवाज शामिल कर रहे हैं, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।